0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
5: जीजी
4: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
5: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
6: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
7: भाई मैंने तो पिछले हफ्ते ही फिगर आउट कर लिया था कि मैं अमीर क्यों नहीं हो पा रही हूँ। रेडियो मस्ती 24/7 माय अंतरा आपके साथ, मस्ती का मंत्रा चल रहा है। 8:00 हो चुके हैं 17 मिनट यहाँ पर, जहाँ पर मैं अभी भी वही अचार खाने में लेकर बैठी हुई। कासल खरीद लिया मैंने, अचार मांग रही हूँ और खुद ही जाके ला रही हूँ 4:30 मिनट का जो है बिल्कुल समय तय करके। बट हैविंग सेड दैट, अभी यहाँ पर सलमा से ही बात हो रही थी। एंड हम लोग कभी किसी से, कभी आपने नोटिस किया है कि जितना, मतलब अगर आपका कोई दोस्त है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, ठीक है, और हम अगर चाहते हैं कि वो हमें कोई एक्सपेंसिव सा गिफ्ट ले, क्या हम कभी उसको बोल पाएंगे? नहीं। हमारे अंदर का गुड गर्ल या गुड बॉय तभी जाग जाता है कि नहीं, ऐसे कैसे, तुम्हारी इज्जत नहीं है क्या? अरे भाई, इस टाइम पर जब जागने की जरूरत है ही नहीं तो क्यों जाग रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ ना। और अगर गलती से उसने दे भी दिया, ठीक है, कोई एक्सपेंसिव, काफी घना घना एक्सपेंसिव गिफ्ट, नहीं नहीं नहीं, आई दिस इज टू मच, आई कैन नॉट, सॉरी, मतलब आई अंडरस्टैंड योर इमोशन, ले लो बहन। बट नहीं, हम लेंगे ही नहीं,

इतना ज्यादा सब कोई हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं और मैं भी वापस अपने ढर्रे पे आ चुकी हूँ कि भाई यू नो अब हो गया है, वेकेशन वेकेशन खत्म हो गया है, वापस अपने लाइन पे आ जाओ. सो वेल आई थिंक कंसिडरिंग दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दिस इज द परफेक्ट चॉइस. इफ यू हैव नॉट नॉट ट्राइड इट, यू मस्ट गो ऑनलाइन एंड ऑर्डर. एंड मेरे वास्ते एक बार उसको ट्राई करके देख लीजिए. एंड ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, जैसे उनके जामुन ट्राइंगल्स. आई जस्ट कम्प्लीटली लव द कॉन्सेप्ट. कोई भी यूनिक चीज मुझे दे दो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. सो आई फाउंड दैट रियली रियली यूनिक. एंड जब जब घर के टेबल पर किसी ने आकर ट्राई किया है, उन्होंने भी वहां से ऑर्डर किया है, तो मुझे लगा कि ये सारी जो बातें हैं ना वो शेयर करती रहनी चाहिए. सो जी मत ऑनलाइन बिल्कुल जाकर ये सारी चीजें ट्राई करें, थोड़ा सा और उसमें यू नो वेबसाइट पे एक्सप्लोर करें. बहुत सारा सामान जो है वहां पर आपको बिल्कुल अवेलेबल मिल जाएगा, आपकी पर्सनल ग्रोसर जो ठहरे है ना. फिलहाल के लिए 8:20 पर कमिंग अप नेक्स्ट श्रेया घोषाल की जो है आवाज, भाई ये ब्यूटिफुल सा गाना भाई नगाड़े के साथ बजेगा ढोल. गुड मॉर्निंग.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: कितनी खूबसूरत सी एक इनोसेंस है इस गाने में एंड द वे इट हैज बीन संग एंड एवरी सिंगल टाइम यू लिसन टू दिस गाना यू गो लाइक तुम हो अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से। 8:30 बज चुके हैं बिल्कुल स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 पर हो चुका है इस गजब से दिन का एक गजब सा ट्रैफिक अपडेट लेने का। वेल हैवी ट्रैफिक आपको इस वक्त मिलेगा ऑन ECP टूवर्ड्स अगर आप जा रहे हैं सिटी बिटवीन MCEAYE एंड बिडॉक साउथ एवेन्यू 1। हैवी ट्रैफिक की खबर ऑन क्वींस वे टूवर्ड्स AYE बिटवीन कॉमनवेल्थ एवेन्यू एंड ब्रैडल रोड। सो वेल ये था इस घंटे का ट्रैफिक का अपडेट बट उसी के साथ साथ कमिंग अप नेक्स्ट इज अनदर गुड वन बाय रेखा भारद्वाज की आवाज। बट दिस इज दोस टाइम्स जब इन्होंने कहा था ओए होए होए क्या मस्त गाना था ये एंड अभी भी इट इज जस्ट टू गुड लेट्स लिसन टू इट टुगेदर।

0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksha and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
1: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
2: हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 मस्ती का मंत्रा चल रहा है आपके अंतरा के साथ. और मैं पूछना चाहती हूँ कि जब तक मुझे कोई बात की कंफर्मेशन होती होती नहीं है तब तक मैं आजकल डिवोर्सों के न्यूज आ जाते हैं, चल क्या रहा है. बट वेल एनीवेज आपको बताती हूँ. क्या आपको पता था कि बादशाह मैंने एंड आई नो दैट इन वन ऑफ माई शोज आई हैड टॉक्ड अबाउट इट एंड आई हैड गिवन यू दिस अपडेट दैट हमारे बादशाह भाई रैपर बादशाह की मैं बात कर रही हूँ कि उनकी वापस से उन्होंने ईशा रिखी नाम की जो है बंदी से शादी की. पहले थोड़ा सा अंडर द रैप्स था एंड सडनली देन वन डे ईशा रिखी जो है केम आउट सोशल मीडिया पे एंड सेड कि हाँ हो गई है, अब हम दोनों पति पत्नी हैं एंड ऑल दोस थिंग्स. आई थिंक जस्ट द अदर डे रेणुका वाज आस्किंग बादशाह की शादी हो गई है. मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने आई रिमेम्बर रेणुका, मैंने खबर दी थी शादी हो गई है. मैं मेरे को चांस भी नहीं दिया कि मैं उनको प्रूव कर पाऊं कि उनकी शादी था वापस से हो गई है. बट उतने में ही डिवोर्स की खबर आ गई है माय डियर फ्रेंड्स. दैट इज राइट भाई, सिंगर बादशाह और हमारे ये जो ईशा रिखी है दे हैव अनाउंस्ड देयर सेपरेशन आफ्टर म्यूचुअली डिसाइडिंग टू पार्ट वेज. अपना जॉइंट स्टेटमेंट जो है उन्होंने इंस्टाग्राम पे रिलीज किया. आजकल सब कुछ इंस्टाग्राम पे होता है, मतलब अब मुझे लग रहा है आज से 10-20 साल बाद कोर्ट के सारे डिसीजंस भी इंस्टाग्राम पे ही लिए जाएंगे. बट वेल एनीवेज एंड दे सेड दैट डिसीजन वाज मेड विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट. ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड, वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड दैट दे विल नाउ मूव फॉरवर्ड ऑन सेपरेट पाथ्स. कहां मैं बोल रही थी कि टाइम कितना जल्दी निकलता हुआ जा रहा है, कहां यहां पे कोई टाइम है ही नहीं. आई मीन कब शादी, कब डिवोर्स, कब सेपरेट पाथ्स हो जाते हैं सच्ची में कुछ पता ही नहीं चलता है. कल ही तो बादशाह गा रहे थे कि तेरे प्यार में बन के चमकू जैसे जुगनू और आज गा रहे हैं कि हो नहीं सकता, नहीं हो सकता. कोई नहीं भाई, फिलहाल तो जुगनू वाला गाने ही सुन लेते हैं बादशाह का. इन्होंने पर्ल नेकलेस दिया हो या ना दिया हो अपने और अपनी अब एक्स वाइफ को, मैं आपको दिलवा सकती हूँ. वो कैसे, जस्ट स्टे ट्यून्ड, आई विल टेल यू हाउ दिस मॉर्निंग. है ना, कमाल की बात कर दी, आके बताती हूँ.

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistik. Come curious, leave Spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
8: Har Tuesday, ek naya twist. Masti ka mantra with RJ Antra.
9: आइए आइए आपको बताया जाए कि कैसे पप्पा और साथ में उनके पर्ल नेकलेस आ सकता है आपके घर में दिस गणेश चतुर्थी। रेडियो मस्ती 24/7, मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ और चल रहा है मस्ती का मंत्रा। एंड जब जब अंतरा आती है और कुछ अच्छा ऐसा बताने के लिए लाती है, तब तब आपको बिल्कुल बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि काम की बात तो मैं हमेशा ही करती हूँ। नहीं वेल भाई, इस बार जो है हम लोग पप्पा लाने जो है गए ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप, यू ऑल नो, वन कैंपल लेन में है। वहां से जस्ट 5 मिनट के वॉकिंग पे है 21 कफ रोड। ओके, वहां पे आप उसको वेयर हाउस बोल लीजिए, शोरूम बोल लीजिए, बट वहीं पे रखे हुए हैं सारे के सारे जितने भी जो है बप्पा। एंड इट इज अ ह्यूज स्पेस बिकॉज दे हैव गॉट दिस इन incredible variety of बप्पा के idols over there. Now it starts with like 6 इंच के साइज के बप्पा टू 42 इंच के साइज के बप्पा। एंड जब हम वहां पे पहुंचे, आई थिंक फॉर अ गुड लॉन्ग टाइम वी वर जस्ट अब्सॉर्बिंग द एनर्जी दैट वॉज इन दैट स्पेस। जस्ट इमेजिन सो ब्यूटिफुली लुकिंग बप्पाज ऑल अराउंड यू, अलग अलग पोजेस में वो बैठे हुए हैं, अलग अलग ज्वेलरी जो है उनकी, और क्या नक्काशी, क्या काम है उसमें। आई मीन सच इंट्रिकेट डिटेल्ड वर्क, इट जस्ट ही लुक so beautiful in each and every one of them, and aisa lag raha tha ki bas sabhi ko ghar le chalo. But well, jaisa ki main hamesha bolti hu ki when you reach a place like that, bappa chooses you. So aap bappa ko choose karte, bappa bhi aapko choose karte, and that's the one you get it for yourself. तो आप ही जाए। व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज आई वांट यू टू आल्सो एक्सपीरियंस द सेम व्हाट आई फेल्ट जो मैंने 21 कफ रोड पर जाकर एक्सपीरियंस किया। सो आप वहां जाए और अपने बप्पा जो है, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स गणेश चतुर्थी और आपको बप्पा घर लाने, दैट इज वन रीजन ऑफ कोर्स, बट अदरवाइज ऑल्सो आप जाकर वहां से अपने लिए, अपने घर के लिए जो है बप्पा ला सकते हैं। बट अगर आप वहां पे जाते हैं ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप, बप्पा को वहां से लेते हैं और जब लेंगे तो उनके साथ आपको मिलेगा ना रिसीट, वो रिसीट आपने कहीं नहीं जाने देना है। यू जस्ट हैव टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ द रिसीट एंड सेंड इट टू अस एट 9151896 3, एंड हु नोज, यू विल स्टैंड अ चांस टू विन दिस पर्ल नेकलेस, विच मींस बप्पा और पर्ल नेकलेस साथ साथ आपके घर में एंट्री। ओ माई गॉड, Isn't that absolutely fantastic? गजब ही हो जाएगा नहीं? So well, बिल्कुल इस जब आप निकले घर से अगली बार कहीं पे घूमने फिरने के लिए तो 21 Cuff Road जरूर जाए बप्पा के बिल्कुल जो भी जिस बप्पा की तरफ आप का लगे कि ये है यही है वो जो हमारे घर आएंगे उनको लेकर रिसीट लेना ना भूले रिसीट लेकर हमें क्लिक करके भेज दें एंड या ले जाए ये पर्ल नेकलेस क्या पता ये आप ही का नाम उस पर लिखा हुआ है सो वेल दैट इज दैट एंड या I just can't wait because how excited we are Ganesh Chaturthi ke time, right? Chahe wo humare studio wale bappa ho ya fir kisi ke ghar pe bhi aaye huye. Hum toh le aaye hai, ab aapki baari hai, right? Let's go.
0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksh and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
1: कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक टाइम पे कितने सारे थॉट्स जो है आपके दिमाग में चल रहे होते हो, एंड वाइल 9 बजे के उस बार यहाँ पर मैं आती हुई, मस्ती का मंत्रा चल रहा है अंतरा के साथ, एंड आई वॉज गोइंग टू टॉक अबाउट एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग कि मैं आपको कोई अपडेट दूँ, और किसी ने मुझसे एक बहुत ही इंटेंस सवाल पूछ लिया, एंड वाइल आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट यहाँ पे आने का वक्त हो गया, तो मेरे दो थॉट्स ऐसे अभी एक दूसरे से बात करते हुए फिलहाल मैं सेपरेट कर रही हूँ। वेल कमिंग बैक टू भाई आज की नेक्स्ट हमारी ये जो खबर, भाई 15 साल की उम्र में क्या कर रहे थे आप ये बताइए। सबके अपने अलग अलग, बट ऑनेस्टली वी वर मोर इन टू भाई स्कूल है, फ्रेंड्स है, होमवर्क है, बस 5 मिनट और दे दो, ये सारी चीजें चलती थी, एंड दीज वर द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट लाइफ डिसीजंस जो हम हैंडल कर रहे थे, इजंट इट। नाउ कट टू हमारे वैभव सूर्यवंशी, द स्टार, द रॉक स्टार हमारे 15 साल का, एंड ही इज आउट देयर गेटिंग द टेस्ट ऑफ कैप्टनसी इन दिलीप ट्रॉफी। जी हाँ, 15 साल, इमेजिन। सो हमारा ये जो यंग सा क्रिकेटर है फ्रॉम समस्तीपुर बिहार, ही वाज प्लेइंग फॉर ईस्ट जोन इन द दिलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल अगेंस्ट द सेंट्रल जोन। ही हैड एंटर्ड द मैच एज वाइस कैप्टन, एंड जब रेगुलर स्किपर ईशान किशन जो है हैड टू लीव द फील्ड बिकॉज ऑफ एन इंजरी, सडनली सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टीम की लैंडेड ऑन वैभव, एंड दिस टीनेजर just took charge. Now, we have already been hearing his name for a while, and Vaibhav has been one of those young cricketing talents जिसके बारे में बार-बार लगता है कि एक मिनट, कितने साल का है वापस से बताना? Because at an age जब most of us were figuring out what we wanted to do अपनी-अपनी ज़िंदगियों के साथ, he's kind of standing on a cricket field with experienced players around him and being asked to कोई भाई अब captain की ज़िम्मेदारी है निभानी तो पड़ेगी. And I think the fun part of stories like this is simply watching somebody's journey this early. Nobody knows exactly where next 10 ya 15 saal will take him. Sports can be unpredictable like that as well. But imagine being able to say someday ki leadership ka pehla taste wo to 15 saal ki umar mein hi ho gaya tha. Not a bad, CV के लिए काफी काफी अच्छा है, नहीं? Radio Masti 24/7 पर, आपने कब की थी लास्ट अपनी, ये मुझे अचानक याद आ गया, पता नहीं बरसों हो गए मुझे अपनी सीवी अपडेट किए हुए। एनीवेज 9:08 बाय द स्टूडियो क्लॉक, गुड मॉर्निंग।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: आओ हुजूर, तुम कौन ले चले ट्रैफिक अपडेट की ओर। इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट जब हो चुके हैं 9:31 बाय द स्टूडियो क्लॉक। हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन AYE टुवर्ड्स इटवर्स एट नॉर्मेंटन पार्क एग्जिट, मिलेगा व्हीकल ब्रेकडाउन ऑन CTE टुवर्ड्स AYE आफ्टर AMK एवेन्यू 1, अवॉइड करें लेन नंबर 1। और व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर है ऑन BKE टुवर्ड्स BIE आफ्टर मांदाई रोड, सो अवॉइड करें लेन नंबर 4। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। और बाकी टिकट जीतने का अपडेट इस हल्का हल्का सुरूर वाले गाने के उस पार वापस आकर बताऊंगी। एंड डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी मैजिक, इट्स गोइंग टू बी सुपर सुपर सिंपल फॉर यू टू विन दोस टिकट्स जो कि मेरे पास है और आपके पास हो सकते हैं। सो यस, स्टे ट्यून्ड।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
4: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
5: So well, let me talk about the video first. Radio Masti 24/7 Antra aapke saath, aur yahan par chal raha hai Masti ka mantra. And there is this thing about magic and mentalist jo hote hain, wo ek alag hi level pe pahunche hue hote hain. Suhani Shah jo hai, wo us level ko matlab आई थिंक क्रैक करके बहुत आगे पहुंच चुकी है. सो आमिर खान के साथ उन्होंने ये जो है पूरा सेशन किया एंड इट वाज क्रेजी. ओके, आमिर खान बैठे हुए थे और ऑडियंस बैठी हुई थी एक छोटे से हॉल में. एंड सुहानी शाह ने कहा कि ऑडियंस में से आप लोग चार पांच कोई भी सवाल पूछे आमिर खान को. एंड आमिर खान को बोला कि डो नॉट टेल मी विच question you are picking to answer. So Amir was like, okay, fine, ठीक है. तो ऐसे ही कि आपका favorite actor कौन है, आमिर खान की favorite movie कौन है, आपका बेटा कौन से school में जाता है, तो ये ऐसे चार पांच सवाल audience में से आए. And then Suhani kept on, you know, she has these questions ki aisa hai, waisa hai, you know, ta ya tha hoga, agar aapko lag raha hai, waisa hai. And Amir Khan was like, being the perfectionist he is, he's like, no, I am not going to answer any of your questions. Main kyun tumhara kaam asaan karu and all those things. But towards the end of it, Suhani Shah gets it right. Ascend School jo hai, unke bete Azad ke school ka naam. And he was kya, everybody was mind blown. Amir Khan could have chosen any question from the audience. Theek hai, char panch the, koi bhi pick kar sakte the. How did she know ki ye wala question aur uska answer ye hai? All she asked him to do was just think it in your mind. I mean, oh, how do you do it, Suhani? And that's what happens, okay? Every single time, you know, you watch Suhani Shah doing all of these things and you ask, how do you do it, Suhani? It's magic. It's magic. Suhani Shah is going to be live in Singapore 20th of September. And bhai, hum chahte hai ki aap hi is बिल्कुल मैजिक को विटनेस करें लाइव. अगर आप हमसे जीतना चाहते हैं जो है, इफ यू वांट टू स्टैंड अ चांस टू विन टिकट्स फ्रॉम अस, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल का सिंपल सा जवाब जरा दे दें. एंड मतलब ये तो करना बहुत ही आसान होता है ना, देर इज नो मैजिक. मैंने कहा था ना, देर इज नो मैजिक इन्वॉल्व्ड ओवर हियर. सो आपको इतना बताना है कि ये जो सुहानी शाह का स्पेल बाउंड लाइव इन सिंगापुर, वंडरफुल एस्केपेड्स एंड एपिक एनकाउंटर्स जो है उनको यहां पर लाने वाले हैं. बट कहां पर लाने वाले हैं, where is she going to be? आपके जो है बिल्कुल ऑप्शन है, ए ऑर्चर्ड, बी क्रेटा आयर पीपल थिएटर, सी सनटेक. कहां पे होने वाला है ये शो ऑन 20th ऑफ सेप्टेम्बर, विच इज अ संडे, एंड शाम को 6 बजे जो है ये शो होगा. सो वेल, आप इसका जवाब दें 9151896 3 पर एंड देन फिर इंतजार करें कि वेदर आपका नंबर लग रहा है इस मैजिक पे कि नहीं लग रहा है. जस्ट इन केस इफ यू डोंट वांट टू टेक अ चांस कि भाई हमें तो बता दो कि क्या करना है, sistic.com पर जाए और वहां जाके अपनी टिकट्स जो है वो खुद भी बुक करा सकते हैं. But one thing is for sure, go and experience this live, क्योंकि मजा तो उसी में है. And I'm sure that you will be mind blown. Trust me on that.
3: Aamir Khan wondered.
6: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing.
3: Salman Khan wanted answers.
7: कैसे किया ये?
3: R. Madhavan said.
8: Awesome.
7: You're very good, yaar. Very well done.
3: And Boman Irani?
9: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
3: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
10: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
3: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
11: How do you know these things? Stop reading my mind.

0: एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: हो गई जी, हो गई। पहली सितंबर की सुबह भी हो ही गई। रेडियो बस्ती 24/7 अंतराप के साथ यहाँ पे चल रहा था मस्ती का मंत्र। व्हाट अ मॉर्निंग इट्स बीन, राइट? कहा बिल्कुल शुरुआत में, मैं कह रही थी कि सेइंग हेलो टू सितंबर, एंड ऑनेस्टली मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैलेंडर सितंबर तक पहुंच चुका है। सो वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इन द मिडल ऑफ इनक्रेडिबली डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। वी हैड अ लिटिल ऑफ बॉलीवुड, थोड़ा सा क्रिकेट, थोड़ा सा मेसी, यू नो, सिंगापुर की एआरपी वाली वेलकम बैक न्यूज, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड देन जो दो कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, हाउ यू कैन गेट बप्पा एंड पर्ल नेकलेस साथ साथ अपने घर में, हाउ यू कैन विन सुहानी शाह का जो है शो का टिकट फ्रॉम अस। सो अ लॉट हैज बीन डन, एंड ये सारी चीजें और ये सारी बातें यूं ही चलती रहेगी, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। सो यस, मुझे दीजिए इजाजत आपसे वापस से बिल्कुल शाम को मुलाकात होगी, बिकॉज शाम को हमारा बहुत ही खास एक प्रोग्राम है, जो कि आपको पता ही है, हमारा डीएम मस्ती दिल से, ऑफ कोर्स वो लेकर हम लोग हाजिर हो जाएंगे। एंड फिलहाल एक घंटे का म्यूजिक कैफे का आपको, हमको सभी को ब्रेक, एंड देन नुपुरवा यानी कि हमारी आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग्स लेकर बिल्कुल हो जाएंगी यहाँ पर हाजिर। टिल देन यू हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: महापुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
0: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पहले चलो,
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
3: रात अकेली है। जोश में रहो।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे। हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: लौट के आया उड़ता पंछी नया हुआ आगाज बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची आवाज।

0: टक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: आज थोड़ा सा खालीपन सा लग रहा है, पूछिए क्यों? क्योंकि आज मैं अपनी एनालॉग रिस्ट वॉच जो है, मतलब किसी भी तरीके की डिजिटल वाली पहनती हूँ ना, वो भी भूल कर आ गई हूँ घर पे। ऐसे सूनी कलाई ऑफिस आई हूँ ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ जुड़ गई है। एनीवेज, होता है हमारी लाइफ में हर दिन हम जिस चीज को ना बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो चाहे हमारी एक सिंपल सी हैबिट हो रिस्ट वॉच की, या वॉलेट ले जाने की, वाटर बॉटल साथ में कैरी करने की, या फिर हेयर स्टाइल कुछ उस तरह से करने की जिसका आज वक्त नहीं मिला, इन चीजों में थोड़ी सी भी कमी आती है ना तो खालीपन लगने लगता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा है, आपके साथ भी ऐसा है क्या? हाँ, वो कौन सी एक चीज है जो आप दिन भर में अगर नहीं करते हैं तो आपको बड़ा मिसिंग सा फील हुआ? टोटली आप मुझे बता सकते हैं। 9151896 3 मेरा नंबर। फिलहाल मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके खालीपन को दूर करने के लिए तमाम गाने तो लगाएगी और तमाम बातें इधर उधर से बटोर के लेकर आएगी। सो डोंट गो एनीवेयर, कमिंग अप इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
2: जोश में रहो।
3: उफ, मैं ये क्या देख रही हूँ। मतलब जिसने एक्टिंग करियर में चुनी थी वो तो कोने में बैठे हैं, पर उनके परिवार वाले जिनका एक्टिंग के ए से भी मतलब संबंध नहीं था वो काम करने निकल गए हैं। अरे अरे अरे अरे अरे, मतलब ये सब चल क्या रहा है यार। आपने जिस चीज की पढ़ाई की है वो सोचकर आप आगे बढ़ते हो और फिर बाद में कुछ और ही प्लान निकल आता है। हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपको याद दिलाना चाहेगी गोविंदा। हाँ जी, वैसे तो इन्हें सुपरस्टार, ये स्टार वो स्टार कह दिया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये बहुत गायब से चल रहे हैं और जब आते हैं तो इतना बेकार प्रोजेक्ट लेकर आते हैं कि कोई इन्हें पसंद नहीं करता। लेकिन इनकी वाइफ और फैमिली जो है वो जरूर एक वो कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के चलते वायरल हो रही है। और इसी बीच सुनने में आया है कि इनका जो बेटा है, हाँ जी गोविंदा का जो बेटा है यशवर्धन आहूजा और उनकी जो मम्मा है यानी सुनीता आहूजा, ये दोनों जरूर किसी बॉलीवुड मूवी में डेब्यू करने वाले हैं। हाँ जी, मतलब पिताजी जो करना चाहें वो करें, लेकिन माँ और बेटे जो हैं वो इस पथ पर आगे निकल चुके हैं। लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: सुन टकाटक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: आप जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं है, और जो नहीं सोचते हो वो तो डेफिनेटली होता है। ये बातें सिर्फ बॉलीवुड में अच्छी लगती हैं। इन रियल लाइफ जैसा आप सोचोगे ना वैसे आप बनते जाओगे। इसीलिए किसी और के बारे में तो पता नहीं, लेकिन खुद के बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचना चाहिए। डेफिनेटली बी सेल्फिश ना इस वाले मामले में। हाँ मतलब ठीक है, अपने लिए इतना बड़ा सोचो जो कोई और नहीं सोच सकता आपके लिए। हाँ बाय द वे, वैसे आप इस मैटर में खुद भी बहुत समझदार हो। हाँ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। By the way, अभी जिसे गैर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो कोई और नहीं है, वो है पेपराजी फोटोग्राफर्स, जो कुछ भी अलग अलग एंगल से शूट करते हैं और अपलोड कर देते हैं। अभी कुछ वक्त पहले पेपराजी ने कुछ इस तरह से वीडियो निकाली करीना की कि वो काफी ज्यादा प्रेग्नेंट नजर आ रही थी। हाँ अब ये चीज वायरल होती गई और उसके बाद ये बात पहुंच गई करीना तक, और उन्होंने मीम की तरह किसी लड़के का पेट जो होता है ना, तोंद जो होती है ना, वो सोशल मीडिया पे अपलोड करी है ना कि ये सब क्या चल रहा है। और फिर उन्होंने पेपराजी फोटोग्राफर्स को भी बोल दिया, क्या फालतूगिरी करते रहते हो तुम लोग, हाँ क्या पागल करते होते हो तुम लोग, और ऐसा इनडायरेक्टली बोलकर वो आगे निकल गई। तो इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं। अगर आपको कोई बोले कि जे और तैमूर के बाद कोई आने वाला है तो आप उसको जरा फटकार लगा देना। ओके आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
5: जीजी।
4: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
5: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। यू नो व्हाट, अगर आप यहाँ पर पहुंचे तो डेफिनेटली आपको एन नंबर ऑफ गणेश जी के आइडल्स मिलने वाले हैं, और ऐसे मिलने वाले हैं कि आप वहां से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और देखिए, हम यहाँ पर पूरी तैयारी रखते हैं कि आपके हर त्यौहार को और ज़्यादा सॉर्टेड और ज़्यादा खूबसूरत बना दे। तो इस बार अगर आप गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को घर लाने की तैयारी में हैं, या फिर सिर्फ एक बार एक्सपीरियंस करना है कि भाई क्या चल रहा है, मतलब इतने खूबसूरत गणेश जी जिनकी बातें पूरे सिंगापुर में चल रही है, वो कहाँ मिल रहे हैं, तो आप पहुँच सकते हैं ज्योति डेकोर एंड फ्लावर शॉप, 21 कफ रोड, जो कि बस 5 मिनट की दूरी पे है कैंप बिल लेन से। एंड अगर आप वहां पहुंचे तो आपको $30 ऑनवर्ड्स तो एन नंबर ऑफ वैरायटी मिलने लगेगी, और इतने सारे कलर कॉम्बिनेशन और खूबसूरती देखकर आप रह नहीं पाएंगे। और हाँ, अगर आप गणपति बप्पा जी से जुड़ी हुई या फिर पूजा सामग्री से जुड़ी हुई शॉपिंग कर भी रहे हैं, तो उसकी जो रिसिप्ट है वो आप हमें व्हाट्सएप या टेक्स्ट कर सकते हैं, और उसके बदले में आपको एक पर्ल नेकलेस मिलने के पूरे चांसेस है। हमारा नंबर है 9151893। तो भाई, सोने पर सुहागा होगा और गणेश चतुर्थी और भी ज्यादा खास बनेगी। किसके भाई? रेडियो मस्ती के साथ और ज्योति डेकोर एंड फ्लावर शॉप के साथ। आज नुपुर द साइड मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: देखो पुरानी बातों में जो मजा है ना वो आज की बातों में कहाँ है। आप फॉर एन एग्जाम्पल पिकल का ले लीजिए। पिकल जितना पुराना होता है, अचार जितना पुराना होता है ना, उतना ज्यादा स्वाद आता है, राइट? और अगर आप अपनी दादी माँ के जमाने वाले अचार को दोबारा से टेस्ट करके देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि वाव क्या बात है, ये पुराना टेस्ट आई हाय इम्प्रेस कर गया मेरी जान। सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपको बताना चाहेगी ऐसी ही पुरानी पुरानी चीजों में एक चीज हुई थी, या यूं बोलूं एक फैशन ट्रेंड जो है वो शिल्पा शेट्टी के मॉडलिंग शूट के साथ निकल कर आ गया था, और वो था लेपर्ड प्रिंट की साड़ी या ड्रेस। हाँ जी, शिल्पा शेट्टी ने उसे इतना ग्रेसफुली कैरी किया था कि हर कोई वैसा पहनना चाह रहा था। किसी और का क्या बोलूं, मेरे पास भी दो तीन ड्रेसेस जो है ना वो लेपर्ड प्रिंट इंस्पायर्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने एक जमाने में शिल्पा शेट्टी को वो पहने हुए देखा था, और रिसेंटली शिल्पा शेट्टी ने दोबारा से उसी लेपर्ड प्रिंट को थोड़े नए अंदाज से साड़ी के साथ अपना फोटोशूट करा के पुरानी यादें ताजा करवा दी है। हाँ, मतलब शिल्पा को देख करना ऐसा लगता है कि यार योगा कर ही लेनी चाहिए। शायद इससे असर तो हो रहा है, शायद क्या डेफिनेटली होता है, लेकिन जिस तरह से इनका फिगर मेंटेन है ना, ओहो जीता जागता एग्जाम्पल। मैं आर जे पर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर, मेरी जान आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट व्हाइल।
1: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: देखो छोटी मोटी विलन वाली जो इमेज है मेरी खुद की है मेरे ही घर में। क्यों? क्योंकि जब मम्मा जो है ना करेले की सब्जी बना देती हैं, लौकी की सब्जी बना देती हैं, या फिर वो होता है ना टिंडा काइंड ऑफ स्टफ बना देती हैं, तो मैं एकदम विद्रोह की लैंग्वेज पे आ जाती हूँ कि मैं दिन भर थक कर ऑफिस से आई हूँ ये खाने के लिए, ये मुझे नहीं खाना है, इससे अच्छा तो विलायती खाना है। तो ऐसी बातें सुनने के बाद थोड़ा घर में नोकझोंक हो जाती है और मेरे घर वाले किसी फिल्मी कहानी की तरह मुझे विलन समझने लगते हैं कि ये हमारे घर की प्रजाति नहीं है, ये बाहर निकलते ही बर्बाद हो गई है। बताओ इतना छोटा सा टॉपिक जो है ना वो आपको विलन बना सकता है, पर सोचिए वो एक्टर्स जो सच में विलन की एक्टिंग कर रहे हैं उनके घर वाले उन्हें कितना ही विलन समझते होंगे। हाँ, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपको याद दिलाना चाहेगी बॉबी देओल। हाँ जी, जिन्होंने आश्रम सीरीज से, एनिमल मूवीज से अपने आप को इतना नेगेटिव दिखा दिया, इतना विलन काइंड ऑफ दिखा दिया कि अब उन्हें अपने घर परिवार वालों को सिद्ध करने के लिए थोड़ा पॉजिटिव रोल ढूंढने की तलाश में लग गए हैं। हाँ जी, ऐसा होता है, मतलब आप चाहे जितना कह लो ना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मिक्स मत करो, अल्टीमेटली हो ही जाती है, यू नेवर नो। मैं आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपको बोलना चाहेगी, आप अपने घर परिवार के बीच ज्यादा विलन इमेज ना बनाए, आगे बढ़े और कुछ सीखे। बॉबी देओल भी काम ढूंढ रहे हैं पॉजिटिव टाइप ऑफ रोल में। हाँ जी, आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Aamir Khan wondered.
4: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
3: Salman Khan wanted answers.
5: कैसे किया ये?
3: R. Madhavan said.
6: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
3: And Boman Irani?
7: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
3: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
8: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhan.
3: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
9: How do you know these things? Stop reading my mind!

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: मुझे तलाश है कोई ऐसे शख्स की जो शाहरुख खान से मिला हो और उसे मिलकर एक्सपीरियंस अच्छा ना लगा हो। मतलब वैसे आप भी सिंगापुर से जब बॉम्बे की फ्लाइट पकड़ के जाएंगे ना, मतलब कनेक्टिंग फ्लाइट ही क्यों ना हो, सो बॉम्बे उतरने के साथ ना एक वाइब आती है यार, काश शाहरुख खान के मन्नत में जाने का मौका मिल जाता, एक बार उनसे बतियाने का मौका मिल जाता तो मजा आ जाता। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, यू नेवर नो, मेरे बोलने के बाद आपके मन में भी ये ख्याल आ जाए। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुरा आपके साथ आपको बताना चाहेगी, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो शाहरुख खान से मिलकर उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं ना वो बताते हैं। ऐसे में टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड की एक पहचान बन चुकी हैं हिना खान, राइट? इन्होंने बताया कि काफी साल पहले शाहरुख खान इनकी फ्लाइट में थे और शाहरुख खान किसी मूवी के प्रमोशन की वजह से इतना ज्यादा थके हुए थे कि कई दिनों से सोए नहीं थे और वो फ्लाइट में सो रहे थे, बहुत गहरी नींद सो रहे थे। तो इन्होंने उनकी टीम से कह दिया था कि ये मिलना चाहती हैं उनसे। तो काफ़ी घंटे इंतज़ार करने के बाद जब शाहरुख खान उठे तो उन्होंने अपनी टीम से कहकर हिना को बुलवाया और फोटो क्लिक करवाई, बिकॉज हिना उनकी बहुत बड़ी फैन थी। मतलब ऐसी थकान में भी वो अपने फैंस का दिल रखना नहीं भूलते हैं। हाँ, तो कुछ सीखो, आप सीखो कुछ सीखो कि शाहरुख खान कितने जेंटलमैन है। हाँ, आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: होता है कई बार कुछ बातें सुनकर या कुछ सवाल सुनकर शब्द नहीं बचते हैं और वहां पर क्या होता है, अरे यार स्पेल बाउंड जैसा लाइव शो आपके लिए आ जाता है। राइट, आप स्पीचलेस हो जाएंगे जब आप सुहानी शाह जो कि जानी मानी मेंटलिस्ट हैं लाइव सिंगापुर में आपको अपना कमाल दिखाएंगे रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मैं आरजे नुपुर आपके साथ, और अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो तो आपको एक सवाल का जवाब देना है। हाँ, पहले मेरी बातें सुन लो फिर मैं सवाल पूछूंगी आपसे। तो लाइव इन सिंगापुर होने वाला है सुहानी शाह का शो, दैट इज स्पेल बाउंड, और डेट रहेगी 20th September संडे 6 PM ऑनवर्ड्स। एंड यहाँ पर जाकर आप जो माइंड रीडिंग से रिलेटेड सरप्राइजेस है ना वो आपको मिलने वाले हैं, एंड सुहानी उसमें मास्टर है यार। हाँ, सो वेन्यू अपना रहेगा क्रेटा अय्यर पीपल्स थिएटर, 30A क्रेटा अय्यर रोड सिंगापुर। एंड आपको टिकट्स मिल रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी खत्म भी हो सकते हैं, अभी मिल रहे हैं सिस्टिक सिंगापुर में, सो डेफिनेटली आपको ग्रैब कर लेने चाहिए खत्म होने से पहले। फिलहाल मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली थी, राइट? तो सवाल ये है कि सुहानी शाह का जो लाइव शो आ रहा है उस शो का नाम क्या है? मैंने बातों बातों में बताया था, अगर आपने गेस कर लिया है तो बता दो यार। 9151 8963 मेरा नंबर, आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

ऐसे तो मुझे कभी भी स्कूल टाइम में ना हिस्ट्री वर्ड या सब्जेक्ट पसंद नहीं था, लेकिन जब से मैंने बॉलीवुड की हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है तब से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है कि नहीं यार ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है। पुराने गड़े मुर्दे उखेड़ना तो ओए होए किसी की फेवरेट हॉबी हो सकती है। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुपम आपके साथ। बाय द वे हिस्ट्री में आपके जितने भी मार्क्स आए हों, हिस्ट्री सुनने में आपके मार्क्स 10 out of 10 आ सकते हैं अगर आप मेरी बातों पर ध्यान दें। अच्छा, एक शो है जिसमें करण जौहर जो है ना कॉफी पीते पीते बहुत सारे सरकास्टिक क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे वो ज्यादा पीते नहीं है, बोलते ज्यादा है। उसी शो पर अभी करीबन आप सोच लो पिछले कुछ साल के गैप्स के बाद सलमान खान आने वाले हैं और उन्होंने यही एग्रीमेंट साइन किया है कि वो सोलो ही आएंगे और सोलो बातें करेंगे और फर्स्ट एपिसोड में सलमान नजर आएंगे। तो क्या बात है भाई, सलमान खान जहाँ जाते हैं ना अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस रख के ही जाते हैं, हल्के में मत ले लीजिएगा आपने। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ऐसी ही भारी भरकम बातें आती हूँ मैं आरजे नुपुर लेकर थोड़ी सी देर में।

हमें अपनी हेल्थ का, अपने परिवार की हेल्थ का बहुत ख्याल रखने का मन करता है। ये सब बातें करके काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा 10 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। घर बैठे बैठे आप हेल्दी ऑर्गेनिक ग्रोसरी से लेके ड्राई फ्रूट से लेकर क्या कुछ नहीं मंगा सकते हैं। और आपको अगर अपनी लाइफ में थोड़ा सा हेल्दी और टॉप अप करना है तो डेफिनेटली आप जामुन हनी, जो कि नेचुरली 100% नेचुरल, रिच इन टेस्ट, मेड विद लव है, वो भी मंगा सकते हैं, जो आपको मिलेगा GGMartOnline.com पर, राइट, जो कि है आपके पर्सनल ग्रोसर। और आपको अगर खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत है तो गुलकंद भी आपको 100% प्योर एंड नेचुरल यहाँ पे मिलने वाला है। इवन जो जामुन फ्लेवर्ड हनी होता है, प्योर हनी जो है ना, वो आपको मिलेगा। जामुन जूस मिलेगा, चिया सीड्स आपको ऑर्गेनिक मिलेंगे, करी लीव्स आपको मिलेगी, और ऐसी आपको ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स की रेंज मिलेगी जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। कृषि फल नट्स की पूरी रेंज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर।

कुछ एक्टर्स एक्टिंग की वजह से चले, कुछ मूवीज कहानी की वजह से चली, और बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो मीम की वजह से चल रहा है। मीम की दुनिया में उसे इतना ज्यादा दिखाया गया है कि लोग उस मूवी को देखना चाहते हैं। और उन सारी मूवीज में एक मूवी है जो मीम्स की वजह से, अपने क्लाइमेक्स की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। पिछले कुछ साल में हमने देखा दृश्यम मूवी के दो पार्ट, जिसमें अजय देवगन की प्राइम एक्टिंग, और कहते हैं ना, मतलब उनका इस दिशा में जो दिमाग चल रहा है एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो भी काफी खास निकल कर आया है। तो दृश्यम मूवी अपने आप में एक आइकॉनिक एग्जाम्पल रही है, राइट? सो मैं आरजे नुपुर आपको बताना चाहेगी कि हर खूबसूरत चीज का अंत होना लाजमी है। इस मूवी के पार्ट बाय पार्ट दो बार तो बना दिए गए, लेकिन अब इसे कंक्लूजन की तरफ ले जाया जा रहा है। हाँ जी, इस मूवी से रिलेटेड मीम 2nd of October की डेट के अराउंड घूमता है, बिकॉज इस मूवी में बहुत सारे डायलॉग में 2 अक्टूबर का जिक्र निकल कर आया है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो देखनी पड़ेगी समझने के लिए। तो अब इसी मूवी का तीसरा पार्ट यानी दृश्यम द कंक्लूजन जो है वो 2nd of October 2026 को रिलीज होने वाला है। क्या बात है, सोने पे सुहागा। क्लाइमेक्स तो हो गई होगा और अजय देवगन भी होंगे, कंक्लूजन भी होगा। सो बहुत कुछ हो सकता है मेरी जान। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइफ पर होते होते कुछ और भी बातें, डोंट गो एनीवेयर, आती हूं मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Aamir Khan wondered.
4: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
3: Salman Khan wanted answers.
5: कैसे किया ये?
3: R. Madhavan said.
6: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
3: And Boman Irani?
7: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
3: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
8: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhan.
3: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
9: How do you know these things? Stop reading my mind!

पूरा साल निकल जाएगा और आप सोचोगे यार मैंने कोई ऐसी जगह एक्सप्लोर नहीं करी जहां मुझे एन नंबर ऑफ वैरायटी मिल जाती, वो चाहे कपड़ों में, खाने में, होम डेकोर में, गिफ्ट्स में, हैंडीक्राफ्ट्स में, लाइफस्टाइल में और ना जाने क्या क्या। सो चार जगह जाने से अच्छा है एक जगह चले जाओ जहां पे सारा सॉल्यूशन निकल कर आ जाए। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ एंड मैं बात कर रही हूँ माउंट बैटन CCIAEC प्रेजेंट्स फेस्टिव बाजार 2026 एंड ये जो है 27th ऑफ सेप्टेम्बर को होने वाला है 10 AM टू 6 PM माउंट बैटन CC मल्टीपर्पज हॉल में। तो देखो एक ही मौका है, एक ही दिन है, तो फुल फ्लेज्ड आप इंजॉय करो। मतलब सिर्फ शॉपिंग, फूड, होम डेकोर, हैंडीक्राफ्ट की या लाइफस्टाइल की ही बात नहीं है, आप यहाँ पे अपने बच्चों को अलग अलग तरह की राइड्स, लकी ड्रॉज और भी एक्साइटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके आप अपनी शॉपिंग इंजॉय कर सकते हो डेफिनेटली। और बड़ी बात यह है कि जो भी छोटे स्टार्टअप्स हैं और वो फेस्टिव एक्टिविटीज में इंडल्ज होके एक प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो आपको पता है बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में स्टॉल की कॉस्टिंग मिल रही है। प्रीमियम टेबल $100 की है, स्टैंडर्ड टेबल $80 की है। सो मुझे लग रहा है कि कोई भी सेकेंड थॉट दिए बिना आपको कॉल करना चाहिए 8330-2518 पे ताकि आप और डिटेल्स जान सके। रजिस्ट्रेशन के लिए go.gov.sg भी आप लॉग ऑन कर सकते हैं। मैं आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksha and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: वो कहते हैं ना कि आपने चढ़ते हुए सूरज को देखकर हालात ही बदल दिए, ख्यालात ही बदल दिए, दिन को रात कह दिया, रात को दिन कह दिया। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपको बताना चाहेगी, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी लाइफ के बारे में हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं। बायोग्राफी जो है ना, उनको मतलब थिएटर्स में जाके एंजॉय करना चाहते हैं। तो बहुत वक्त से एक अपने हॉलीवुड के ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर हैं केविन मैकडॉनल्ड, उनकी नज़र थी किस पे? शाहरुख खान पे। भैया शाहरुख खान के ऊपर एक बायोग्राफी बननी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन अब उनकी नज़रें बदल गई हैं। उन्होंने भी सोच लिया है कि प्रॉफिट यहाँ नहीं, यहाँ है। और कहाँ है बताऊँ? उनके अकॉर्डिंग इंडिया के प्रधानमंत्री, हाँ जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अगर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, फिल्म बनाई जाए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगी, वो ज्यादा स्पाइसी रहेगी। क्या बात है, क्या बात है, चढ़ते सूरज को सलाम करना कोई इनसे सीखे? खैर ये सब तो चलता रहता है, डायरेक्टर्स और एक्टर्स तो अपनी कहानियां बदलते रहते हैं, लेकिन रेडियो मस्ती पर बदलते हुए गाने आपका इंतजार भी करते रहते हैं। फिलहाल के लिए मी आरजे नुपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मुलाकात होगी बहुत जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, बिल्कुल, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है।
5: तुमको लेकर
4: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
5: मुझे चांद पे ले चलो।
4: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
5: रात।

वेलकम टू योर चिल जोन, मस्ती म्यूजिक कैफे, ओनली म्यूजिक, ओनली मस्ती।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: your passport to the world every Monday morning. From global headlines to a pinch of Bollywood spice.
1: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out. Josh me
4: raho. Kuch purani dhune. कुछ भूली बिसरी यादें,
5: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
4: कोई आवाज, कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
6: करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: लकी लकी।
1: बोल पेट्रोल ते पवाए नी। कोई गल नी, साड़ी गड्डी ते गुडवेल नाल चलती है।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए ड्यूटी पर। Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. DJ.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे। सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है।
2: कुछ कॉमन होना जरूरी है क्या?

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे। ना
5: करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh Mehra. Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

Hi everyone, this is Renuka and welcome to another episode of Dear Masti Dil Se. Dear Masti Dil Se. Because sometimes radio par baitha ek anjana insaan aapko duniya se zyada samajh leta hai. Aaj ke show ki shuruaat thodi alag, thoda hatke. बस आज एक थॉट दिमाग में आया. कभी कभी न्यूज़ देखो तो लगता है कि दुनिया में कितना कुछ एक साथ हो रहा है. कहीं वॉर है, कहीं पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, कहीं नेचुरल डिजास्टर्स हैं, और इसी वीक ऑफकोर्स नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर आई डेवस्टेटिंग फ्लड्स ने हजारों फैमिलीज की जिंदगी पल में ही बदल दी. और हम स्क्रीन के इस तरफ बैठकर सोचते हैं लाइफ रियली इज अनप्रेडिक्टेबल, है ना. लेकिन फिर हम फोन साइड पर रखते हैं और अपनी जिंदगी में लौट आते हैं और यहाँ भी अपनी छोटी बड़ी बैटल्स चल रही होती हैं. किसी का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, किसी को अपने बच्चों की फिक्र है, कोई करियर को लेकर परेशान है, किसी का दिल किसी अपने के बिहेवियर से दुखी है, और कोई बाहर से बिल्कुल ठीक दिख रहा है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ कैरी कर रहा है. और कभी कभी हम खुद को गिल्टी भी फील करते हैं. दुनिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और मैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर इतनी अपसेट क्यों हूँ. बट यू नो व्हाट, पेन डजंट नीड कंपैरिजन. आपकी प्रॉब्लम किसी और की प्रॉब्लम से छोटी हो सकती है, लेकिन अगर वो आपको रात को सोने नहीं दे रही तो वो आपके लिए रियल है. शायद जिंदगी का आंसर ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम से बच जाएं, बिकॉज वी कैन नॉट. शायद आंसर ये है कि इस अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में हम थोड़ा और प्रेजेंट रहें, थोड़ा कम ईगो रखें, थोड़ा जल्दी माफ करें, थोड़ा ज्यादा फोन करें उन लोगों को जिनसे हमें प्यार है, और जब कोई कहे आई एम फाइन, कभी कभी एक बार और पूछ ले आर यू रियली फाइन. तो क्या आप सच में रियली फाइन हैं? अगर हैं तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं है तो फिर हम हैं ना आपके लिए. चलिए, दिस इज योर स्पेस, दिस इज डियर मस्ती दिल से. शुरू करते हैं आज की चिट्ठियां. और इतना याद रखिए एक बार और, पेन डज नॉट नीड कंपैरिजन. ठीक है, तो कुछ भी है दिमाग में लिख भेजिए हमको 9151896 3 अनोनिमसली.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: दुनिया इतनी खराब हो गई है ना कि हर कोई बुरा लगने लगा है। मतलब अच्छा शख्स भी अब बुरे की कैटेगरी में ही काउंट होता है। इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, इसमें उन चंद लोगों की गलती है जिन्होंने ये सारी चीजें करी हैं। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड जिन्होंने मुझे लेटर भेजा है उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि एक इंसिडेंस मेरे संग रिसेंटली हुआ। मतलब हम इतने केसेस पढ़ते हैं, इतना कुछ करते हैं, सो मैं रिसेंटली थाईलैंड गई हुई थी। तो मेरे दिमाग में एज अ सोलो ट्रैवलर जितनी सिक्योरिटी हो सकती है, जितने बुरे ऑप्शंस और जितनी पॉइंट्स मैं रख सकती हूँ मैंने रखी थी। सो मेरा टैक्सी वाला जो है ना, वो लेट नाइट मुझे एक सुनसान रोड पे ले जाता जा रहा है, और मैं ना उसके बारे में बहुत बुरा सोच रही हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये है, कुछ तो वो है। और एंड में उसने मुझे अच्छे से छोड़ा, सी ऑफ किया, इवन वो रुका रहा जब तक मैंने होटल में चेक इन नहीं किया। सारी चीज़ों का उसने मुझे एक्सप्लेनेशन भी वहाँ खड़े होकर दिया। तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि पूरे रास्ते जिसके लिए मैं इतना बुरा सोच रही थी वो बुरा नहीं था। तो आज भी मन में ये गिल्ट ज़रूर निकल कर आती है। सो मैं आपको बस बोलना चाहूँगी कि ये आपकी गलती नहीं है। आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, बिकॉज आज के टाइम पर अगर आपने वर्स्ट नहीं सोचा ना तो आपके संग कुछ अच्छा नहीं होगा, और आपने सब कुछ अच्छा अच्छा सोचा ना तो वर्स्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हाँ, तो लाइफ में हाँ, सामने वाले को इतनी जल्दी हमें जज करना नहीं चाहिए, पर जज करा तभी तो आप और ज्यादा कॉन्शियस हो गए, राइट? तो ये सोचना उनके लिए गलत नहीं था, पर ये सोचना कितना सही है कि आपने किसी को गलत समझा और आइंदा आप ऐसा नहीं करोगे, राइट? बिल्कुल। डियर मस्ती दिल से शो पर ऐसे ही सवाल जवाब बने हुए हैं। मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: वेलकम बैक। इस समय मैं एक चिट्ठी नहीं पढ़ने वाली हूँ, इस समय मैं एक ऑब्जर्वेशन के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। और वो ऑब्जर्वेशन इज अबाउट अ वीडियो दैट आई रिसेंटली सॉ एंड इट रियली डिस्टर्ब्ड मी।
1: नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स। डियर मस्ती, दिल से।
0: मैंने इसके बारे में कल अपने मॉर्निंग शो पर भी हल्की सी बात करी थी। ये वीडियो जो कि कहा जा रहा था दैट्स फ्रॉम द फ्लड्स अराउंड द नेपाल तिब्बत रीजन,

बॉडीज जहाँ पर पानी में बहती चली जा रही हैं, एंड देयर वर पीपल, देयर वर टू पीपल ट्राइंग टू पुल देम टुवर्ड्स द बैंक, बट देन यू रियलाइज वो बालों से पकड़कर उस बॉडी को अपनी तरफ इसलिए खींच के पकड़े हुए थे जहाँ पानी का करंट बॉडी को अपनी तरफ लेकर जा रहा था, और ये लोग उसको बालों से खींचे हुए थे. दे वर पुलिंग द ज्वेलरी दैट दोज डेड पीपल वर वेयरिंग. तो मैंने सोचा, रियली किसी की मौत हुई है, सम फैमिली समवेयर हैज लॉस्ट अ पर्सन दे लव, एंड एट दैट मोमेंट यू कैन स्टिल थिंक अबाउट व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम देम. और उसके बाद इट मेड मी थिंक अबाउट समथिंग मच बिगर. वी डोंट हैव टू बी स्टैंडिंग बिसाइड अ फ्लड टू फॉरगेट ह्यूमैनिटी. ये तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है ना. आपके बॉस होते हैं, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास पोजीशन होता है, किसी के पास पावर होता है टू मेक समवन्स लाइफ डिफिकल्ट, टू ह्यूमिलिएट समबडी, टू एक्सक्लूड देम, टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर वीकनेस, एंड मे बी नोबडी कैन स्टॉप यू, बट यू कैन स्टॉप योरसेल्फ. क्योंकि पावरफुल होने का मतलब ये नहीं होता दैट यू आर द बिगर पर्सन. हाउ यू ट्रीट समवन हु हैज लेस पावर देन यू डज. बी काइंड. The employee who is struggling, the elderly person taking too long, the waiter who made a mistake, the colleague everyone is laughing at, the family member who's having a difficult time, you don't know what somebody is carrying inside. And perhaps that's exactly why I believe ki hamara jo ye wala show hai na dear masti dil se, kitna zaruri hai aaj ki zindagi mein. क्योंकि हर वीक, हर हफ्ते बिहाइंड दीज एनोनिमस लेटर्स हम डिस्कवर करते हैं कुछ बहुत ही सिंपल. लोगों को दर्द है, लोग कंफ्यूज्ड हैं, पीपल आर लोनली, एंड समटाइम्स दे डोंट नीड अनदर पर्सन जजिंग देम, दे जस्ट नीड समबडी टू लिसन. सो व्हाटएवर पोजीशन यू होल्ड इन लाइफ गाइज, जितने भी सक्सेसफुल आप हो, नेवर बिकम सो पावरफुल दैट यू फॉरगेट टू बी काइंड. क्योंकि अल्टीमेटली बिफोर बींग अ बॉस, अ लीडर, अ प्रोफेशनल, अ पेरेंट, अ पार्टनर, वी आर ह्यूमन बींग्स. And perhaps the world needs us to remember the human part a little more often. Hai na? Senti ho gaya? Par hai to sach. Sochiyega.

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
3: GGMart, your personal grocer।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: Welcome back to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7. मैं अंतरा यहाँ पर जुड़ गई हूँ आपके साथ। और अगली चिट्ठी मेरे पास ये जो है, इसका सवाल सुनने में छोटा लग सकता है कि कॉम्प्लीमेंट ही तो है, बट इसके अंदर एक और भी बड़ा सवाल है। क्या रिलेशनशिप में लव्ड फील करना और अप्रिशिएटेड फील करना अलग हो सकता है? चलिए सुनते हैं। डियर मस्ती, My husband is caring and dependable. He is there whenever I need him, and I know he loves me. But he almost never compliments me. जब मैं ड्रेस अप होती हूँ या फिर मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ, sometimes I just want to hear that he appreciates me. I know actions matter more than words, so I feel silly even wanting this when I already have a good husband. Can you have a good relationship and still feel emotionally underappreciated? Okay. डियर लिसनर, एब्सोल्युटली। एंड अपने आप को और अपने इमोशन को जो है बिल्कुल सिली मत कहिए। आप ये नहीं कह रहे कि हस्बैंड हर सुबह उठकर अनाउंस कर दे सबको कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत एंड टैलेंटेड जो है लड़की है उनके जिंदगी में। यू आर सिंपली सेइंग दैट समटाइम्स आई वांट द पर्सन आई लव टू टेल मी दैट ही सीज मी। एंड जैसे कि आपने कहा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, दैट इज वेरी ट्रू, एंड दैट डजंट मीन वर्ड्स हैव नो वॉइस एट ऑल, isn't it? Maybe your husband expresses love through actions. Problem hai, solve kar diya. Aapko zarurat hai, he is there. Responsibility hai, he'll take it. Unke dimag mein maybe, of course I appreciate her. Usse pata to hai, mujhe har cheez batane ki zarurat thodi na hai. Aur aapke dimag mein, haan, pata hai, par kabhi bol bhi diya karo. So neither person loves less. Sometimes we are simply sending love in one language and waiting to receive it in another. Lekin ek distinction zarur hai. Agar compliments na milne par aapki self-worth shake hone lagti hai, to phir thoda apne andar bhi jhaankna zaruri hai. Because partner ka appreciation beautiful hai. Par partner ko hamari self-worth ka full-time manager bilkul nahi bana dena chahiye. Lekin occasionally wanting to hear that you look lovely, ya phir I appreciate what you do, that's not unreasonable validation. That's appreciation. So silently wait मत कीजिए कि वो खुद figure out कर लेंगे ये सारी बातें. Just go and tell him. Don't start with a negative sentence कि तुम तो कभी मेरी तारीफ ही नहीं करते. No. Instead, say something like, I know you love me because you show it in so many ways, but I have realized verbal appreciation जो है वो मुझे काफी matter करता है. So when you say something nice or appreciate what I have done, it makes me feel even nicer. So basically, अगर आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, you are helping him understand you. And equally, don't become so focused on the words you are missing that you stop noticing the love you are already receiving. Are you getting my point? Maybe, message me when you reach is his I love you. Maybe taking something off your plate when you are tired is his way of showing appreciation. Notice his language while teaching him a little of yours. बिल्कुल। और अगर शुरू शुरू में उनका एफर्ट ना थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगे, जस्ट टेक द कॉम्प्लीमेंट। होप दिस हेल्प्स डियर लिसनर। यह है डियर मस्ती दिल से और रेडियो मस्ती 24/7।

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं अभी फिलहाल आपके साथ अंतरा यहाँ पर बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ और अपने अगले चिट्ठी की तरफ जो है बिल्कुल बढ़ना चाहती हूँ। मैं अभी इसको पढ़ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा जोन है ये, क्योंकि किसी ने कुछ किया तो किया हो तो रीजन मिल जाता है, लेकिन कोई बस हमें पसंद नहीं करता फॉर नो रीजन एट ऑल, दिमाग डिटेक्टिव जो है वो बन जाता है कि मैंने कुछ बोला था क्या, किसी ने कुछ कहा उस दिन, हेलो तो बोला था ना मैंने कुछ गलत किया क्या, हाउ वी कीप ऑन क्वेश्चनिंग आवरसेल्फ। सो चिट्ठी कुछ ऐसी कहती है, दैट डियर मस्ती, देयर समवन इन माय सोशल सर्कल हु क्लियरली डजंट लाइक मी, शी इज नेवर ओपनली सेड दैट एनीथिंग बट आई कैन फील इट इन द वे शी रिस्पॉन्ड्स टू मी कंपेयर टू एवरीवन एल्स। मैंने अपना बिहेवियर भी चेक किया एंड आई जेन्युइनली कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग आई हैव डन, सो माय इंस्टिंक्ट इज टू क्लियर द एयर, बट अनदर पार्ट ऑफ मी थिंक्स दैट व्हाई डू आई नीड एवरीवन टू लाइक मी, कैन वी सिंपली एक्सेप्ट दैट समटाइम्स समवन जस्ट वांट। माय डियर लिसनर, मुझे ऐसा लगता है अक्सर आप लोग अपने सवालों का जवाब जो है अपने सवालों के साथ साथ ही दे देते हैं। यस, हम सब कहते हैं आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी अंटिल वी डिस्कवर समबडी डजंट लाइक अस, फिर सडनली आता है बट व्हाई। तो क्लियर द एयर करने से पहले आई थिंक आई विल आस्क माईसेल्फ अ क्वेश्चन, दैट इज देयर एक्चुअली समथिंग टू क्लियर, हैज शी बीन डिसरिस्पेक्टफुल, दैट्स माई क्वेश्चन टू यू, said something about you, is her behavior making situations uncomfortable, if yes then you should and you must talk, you have a clear communication with that person, but agar wo simply aap se warm nahi hai then maybe there is not any kind of conflict, maybe there is simply no connection, wo kya kehte na vibe match nahi ki aap logo ki, so ho sakta hai personalities match nahi karti, maybe she has misunderstood you, maybe something about your personalities doesn't click, or maybe without any dramatic reason whatsoever she just doesn't particularly like you and that's uncomfortable but allowed. Self reflection zarur kariye, agar different people repeatedly same feedback agar kuch keh rahe hain stop and maybe then you can check ki sab theek to hai, but self reflection aur self doubt mein difference hota hai, aapne honestly check kar liya, ab har conversation replay karna, extra sweet banna, khud ko prove karna just to win one person's approval, I would ask why, स्पेशली जब 15 लोग आपको हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारा फोकस उसे एक इंसान में है जो नहीं कर पा रहा है, मैं क्या करूंगी, पोलाइट रहूंगी, रिस्पेक्टफुल रहूंगी, नॉर्मल रहूंगी बट परफॉर्म नहीं करूंगी, बेसिक रिस्पेक्ट हम पीपल को ओ करते हैं राइट, बीइंग लाइक्ड बाय देम वी डोंट, और अगर डिसलाइक कभी डिसरिस्पेक्ट बन जाए, सार्कास्टिक कमेंट्स, रूमर्स, डेलिबरेट एक्सक्लूजन, तब एड्रेस द बिहेवियर, डोंट आस्क व्हाई डोंट यू लाइक मी, कहिए आई हैव नोटिस दिस हैपनिंग अ फ्यू टाइम्स, इज देयर समथिंग वी नीड टू डिस्कस, या ट्रस्ट मी दिस वर्क्स एवरी सिंगल टाइम, बिकॉज नाउ यू आर नॉट आस्किंग फॉर अप्रूवल, यू आर आस्किंग कि भाई क्या चल रहा है, हेलो। So dear listener, maybe growing comfortable with ourselves also means accepting. You can be perfectly decent person and still not be everyone's person and that is okay. वैसे भी आपको भी तो दुनिया का हर इंसान पसंद नहीं आता होगा, I'm sure. And सबने आपका क्या बिगाड़ा है, कुछ भी नहीं. Sometimes we simply don't connect. So let her have her opinion and you keep your peace. Your job is not to be universally liked. Your job is to make sure you still like the person you are being. बाकी गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। यह है जियो मस्ती, दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है आपका फेवरेट वाला शो। हाँ, डियर मस्ती, दिल से। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे पास आया है। हाय रेणुका, आई एम वर्किंग विद समवन ऑन एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट। प्रॉब्लम ये है दैट दिस पर्सन हैज अ ह्यूज ईगो। उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियाज हैं अबाउट एवरीथिंग, लेकिन कोई भी सजेशन फील्स लाइक क्रिटिसिज्म टू हिम। इफ आई से मे बी वी कैन डू दिस डिफरेंटली, इमिडिएटली डिफेंसिवनेस आ जाती है। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड कीपिंग क्वाइट जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। बट मेरी प्रॉब्लम ये है दैट दिस प्रोजेक्ट हैज बोथ आर नेम्स ऑन इट, एंड आई कैन ऑलरेडी सी थिंग्स दैट कुड बी मच बेटर। अगर मैं कुछ ना कहूँ, द फाइनल आउटपुट मे नॉट बी समथिंग ईदर ऑफ अस इज प्राउड ऑफ। तो मैं क्या करूं? What do you do when someone's ego starts getting in the way of the work? What do you do? भाई, ईगो बहुत बड़ी चीज है, इतना तो मैंने भी रियलाइज किया दुनिया में। और ईगो वाले जो लोग होते हैं ना, उनको आप इतना भी कह दो कि तुम्हारी शर्ट का बटन थोड़ा सा खुला हुआ है या हिला हुआ है अपनी जगह से, तो वो उस बात को भी इतना पर्सनली ले लेते हैं कि उनका मूड बिल्कुल बदल जाता है कि मेरे साथ मैं गलत हो ही नहीं सकता, एंड दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। पर खैर, कोई बात नहीं, इस बात का भी सोल्यूशन है, क्योंकि ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हम रोज रोज अपनी जिंदगी में डील करते हैं विद पीपल विद ह्यूज ईगोस। हाँ, मैं जानती हूँ ये बात। चलिए, छोटा सा ब्रेक, ये वाला गाना कमिंग अप आपकी ईगो को थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए, और फिर उसके बाद में आके बात करते हैं हम कि इनको कैसे झेला जाए।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: हाँ तो भाई, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अबाउट दिस सवाल जो मेरे तक आया है आज, अबाउट वर्किंग ऑन अ कॉमन प्रोजेक्ट विद अ पर्सन विद अ ह्यूज ईगो. एंड इस इंसान की प्रॉब्लम ये है कि उसको कोई भी फीडबैक नहीं दिया जा सकता. लेकिन जब आप किसी प्रोजेक्ट पे साथ में काम कर रहे होते हैं तो इम्पैक्ट तो दोनों के आउटपुट पे होता है ना, तो कैसे दिया जाए फीडबैक. डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा. ऑनेस्टली ये लोग हर जगह पाए जाते हैं, सिर्फ ऑफिस में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं. तो भाई ऐसा है कि पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जब आप किसी ईगो वाले इंसान के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो डोंट मेक इट अबाउट द पर्सन. आप प्रोजेक्ट का सोचिए. इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस डजंट वर्क, आप कहिए डू यू थिंक वी कुड मेक दिस इवन स्ट्रॉन्गर इफ वी ट्राइड दिस, या आई रियली लाइक वेयर यू गोइंग विद दिस, कैन वी एक्सप्लोर अनदर ऑप्शन एज वेल. कभी कभी ना आप क्या कहते हैं इज नॉट, दैट्स नॉट द पॉइंट. आप कैसे कहते हैं, दैट इज द पॉइंट. And this is the other side. You cannot spend pura project apna walking on eggshells, theek hai? Because then you're not collaborating. Aap kisi ki ego hi manage kar rahe hain. Aur wo is seriously exhausting. Agar aapka naam hai attached to the final result, to aapki responsibility hai bhai to speak up. Lekin respectfully, professionally, honestly. और अगर आपका सजेशन फिर भी रिजेक्ट हो जाए तो फिर कुछ बहुत ही सिंपल सी बात कहिए, दैट यू नो वी मे हैव डिफरेंट अप्रोचेस बट अल्टीमेटली वी बोथ वांट दिस प्रोजेक्ट टू सक्सीड, सो कैन वी अग्री दैट द बेस्ट आइडिया विंस वेदर इट्स योर्स और माइन. बिकॉज कोलैबोरेशन इज नॉट अबाउट प्रूविंग कि मेरा आइडिया बेटर है, इट्स अबाउट आस्किंग व्हाट विल मेक द आउटकम बेटर. बस एक यही चीज छोटी सी हम सबको याद रखनी चाहिए कि काम है, व्हेन यू आर एट वर्क, इन बिजनेस, रिलेशनशिप्स, आप अपनी ईगो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और यू कैन इम्प्रूव द आउटकम. क्योंकि समटाइम्स आप दोनों चीजें नहीं कर सकते. और जानते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द रूम इज नेसेसरली द वन हु रिफ्यूजेस टू चेंज देयर माइंड. समटाइम्स सिर्फ वो इंसान जिसमें कॉन्फिडेंस है टू लिसन टू फीडबैक, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है. कहीं ना कहीं से ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, घुसा दीजिए. कहिए भैया मैं तो फीडबैक बहुत ही बढ़िया लेता हूं या लेती हूं, व्हाट अबाउट यू. मेक द पर्सन थिंक, मेक द पर्सन जस्ट पॉज एंड रिफ्लेक्ट. काम हो जाएगा बॉस, मुझे बता जरूर देना. डियर मस्ती, दिल से.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: लाइफ में कुछ इंसिडेंसेस हमें सबक सिखाने नहीं आते, बल्कि मेमोरी बनने आते हैं, ताकि सालों बाद किसी को आप अपनी लाइफ की जर्नी बता रहे हो ना, तो बताते बताते आपके मुंह से हंसी निकल जाए। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड डेफिनेटली अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उनकी बातें सुनकर तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जो इन्होंने लिखा है वो बता रही हूँ। डियर मस्ती दिल से, मैं अपनी लाइफ के उस फेज में हूँ जब मैं डेटिंग ऐप से अच्छे शख्स से भी मिला हूँ और बुरे से बुरे लोगों से भी मिला हूँ। मेरा एक रीसेंट एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं उस ब्लाइंड डेट से कैसे भी छिप छिपा के बाहर नहीं निकला, बल्कि मैं उस जगह से उल्टे पाँव भाग कर आया हूँ। और वो चीजें अभी बताने में तो मुझे हंसी आ रही, पर उस वक्त जब हुई थी मेरे साथ तो मुझे बहुत ही अजीब लगा था, डर सा भी लगा था। तो हुआ क्या था इनके साथ, इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं किसी ब्लाइंड डेट पे गया और जिनकी फोटो मैंने ऐप के थ्रू देखी थी वो मुझसे मिलने नहीं आई, पर हाँ उनका एक 20 साल के बाद वाला वर्जन मुझसे मिलने आया था। मतलब उन्होंने अपनी टीनेजर की या फिर अपनी 20s की पिक्चर्स डाली हुई थी और वो खुद 40s की थी, और पता नहीं मैं कैसे इन बातों में आ गया। सो डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे

मैं तो फुल ऑन कहती हूँ, आपको रियल लाइफ पीपल जो मिल रहे हैं ना, उनको जानिए, उनको समझिए और फिर उनके साथ लाइफ में आगे बढ़िए। क्यों किसी कहीं दूर बैठे अनजान इंसान को ढूंढना है, जो है यही है।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से, मैं हूँ आपकी अंशरा आपके साथ। और अगर आपने डाउनलोड किया है मस्ती मीडिया 24/7 का ऐप, देन यस यू हैव कनेक्टेड विद द बेस्ट। चलिए अगली चिट्ठी, और इस चिट्ठी में एक वर्ड है जो हम बहुत इजीली यूज कर देते हैं, फॉरगिव, नहीं माफ कर दो उसे, उसने तो सॉरी बोल दिया है, अब मूव ऑन कर जाओ, क्या ही होगा। बट मूविंग ऑन एक्चुअली दिखता कैसा है, कभी सोचा है आपने? So, चिट्ठी कुछ ऐसे कहती है, that dear Masti, someone very close to me hurt me badly a long time ago and our relationship eventually ended. Recently, they came back and genuinely apologized. They acknowledged that what they had done and honestly, I believe them. So, I don't carry that grudge basically. But I still don't want the relationship back. They keep asking me if you have really forgiven me, why can't we start again? And now I'm wondering if maybe I haven't actually forgiven them. So, kya forgiveness have to include another chance? So, my dear listener, aap hurt hue, relationship khatam hua, time laga, gussa bhi kam hua. सामने वाला वापस आया, सिंसियरली अपोलोजाइज किया, आपको अपोलोजी जेन्युइन भी लगी, आपको लगा हाँ मैंने माफ कर दिया, लेकिन सवाल आया अगर माफ कर दिया तो रिलेशनशिप वापस क्यों नहीं? एंड सडनली यू आर क्वेश्चनिंग योर ओन फीलिंग्स, बिकॉज हम फॉरगिवनेस को अक्सर ना एक पैकेज सा बना देते हैं कि सॉरी बोला, माफ किया, चलो अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बट क्या सब पहले जैसा होना जरूरी है? अगर आपके अंदर अब गुस्सा नहीं है, आप उनका बुरा नहीं चाहते, बट समथिंग इनसाइड यू स्टिल सेज दैट आई डोंट वांट टू गो बैक देयर हाउ इट वाज, तो वो क्या है? क्या वो अनफॉरगिवनेस है, क्या वो फियर है, लॉस ऑफ ट्रस्ट है, सेल्फ प्रोटेक्शन है, या सिंपली एक्सेप्टेंस दैट समथिंग चेंज्ड? और सामने वाले की साइड भी है ना, कि मे बी दे हैव जेन्युइनली चेंज्ड, दे हैव एक्नॉलेज्ड द हर्ट एंड परहैप्स दे आर थिंकिंग दैट आई नो आई मेस्ड अप बट कांट वी ट्राई अगेन। सो आई अंडरस्टैंड बोथ साइड्स, कि वन पर्सन सेज आई हैव अपोलोजाइज्ड, कांट वी रीबिल्ड, एंड द अदर से दैट आई हैव फॉरगिवन यू बट आई डोंट नो इफ आई वांट टू। एंड दैट्स वेयर द रियल क्वेश्चन बिगिंस, कि फॉरगिवनेस, ट्रस्ट, अनदर चांस, रिकंसिलिएशन, क्या ये सब एक ही चीज है या हमने इन्हें अननेसेसरी एक ही साथ टाई करके रखा है? लेट मी गिव इट लिटिल मोर थॉट, बिकॉज मुझे भी एक बात और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझना जरूरी है, दैट फॉरगिविंग समवन एंड ट्रस्टिंग देम अगेन एंड अलाउइंग देम बैक इनटू योर लाइफ, क्या ऑटोमेटिकली ये साथ आते हैं तीनों? लेट मी कम बैक अगले इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद, एंड फिर मैं आपकी बात का जो है जवाब देती हूँ ऑन डियर मस्ती दिल से। सो स्टे ट्यून्ड।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं अंतरा बिल्कुल आपके साथ। इस म्यूजिकल ब्रेक से पहले हमारे एक डियर लिसनर का सवाल था दैट किसी क्लोज पर्सन ने उनको हर्ट किया, रिलेशनशिप उनका खत्म हो गया। काफी वक्त के बाद वो इंसान वापस आए, उन्होंने सिंसियरली अपोलोजाइज किया, अपनी गलती एक्सेप्ट की। हमारे लिसनर को लगता है कि उन्होंने जेन्युइनली फॉरगिव भी कर दिया है, बट दे डोंट वॉन्ट द रिलेशनशिप बैक। और सामने वाले का सवाल है कि अगर माफ कर दिया है तो फिर हम दोबारा स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। माय डियर लिसनर, मैं इन तीन चीजों को ना अलग अलग रख के सोचना चाहती थी, फॉरगिवनेस, ट्रस्ट एंड रिकंसिलेशन। सो फॉरगिवनेस कैन मीन दैट मैं अब इस हर्ट और गुस्से को लेकर आगे नहीं चलना चाहती। ट्रस्ट मीन्स मैं आपके साथ फिर से इमोशनली सेफ फील करती हूँ। एंड रिकंसिलेशन मीन्स मैं इस रिलेशनशिप को दोबारा चूज करना चाहती हूँ। सो तीनों ऑटोमेटिकली साथ नहीं आते। अ सिंसियर अपोलॉजी डेफिनेटली मैटर्स। किसी का जेन्युइनली कहना दैट आई वॉज रॉन्ग, आई हर्ट यू, दैट टेक्स अकाउंटेबिलिटी। बट एन अपोलॉजी कैन एक्नॉलेज द पास्ट, इट कैन नॉट ऑटोमेटिकली रिस्टोर वॉट द पास्ट चेंज्ड। Maybe trust changed, maybe you changed, maybe आपने बहुत मुश्किल से उस relationship के बिना अपनी peace जो है वो rebuild करी है। लेकिन एक honest question खुद से जरूर I think पूछ सकते हैं आप कि मैं relationship वापस क्यों नहीं चाहती। Is it genuinely because this relationship is no longer right for you? या somewhere you still want the other person to experience what losing you felt like? है ना? Because अगर second है, maybe hurt अभी भी process हो रहा है, and that's okay too. But if you can genuinely say that I don't hate you, I believe your apology and I wish you well, but I don't want to go back, then that does not make your forgiveness less real. आप बिल्कुल simply कह सकते हैं कि I have forgiven what happened, but forgiving you and rebuilding a relationship are two different decisions for me. And I think ये भी उतना ही important है if you come to think about it. Somebody can genuinely change and you can still decide not to return. उनका जो growth है, that also deserves respect. नहीं? It doesn't automatically create an obligation for you. And अगर आपका दिल does want to explore another chance, take it slowly. एक apology से trust instantly rebuild वैसे भी नहीं होता है. Trust comes back through consistent behavior over time. So my dear listener, to answer what you wrote to me, no, forgiveness doesn't always have to include another chance. Sometimes forgiveness says, I release what happened. Reconciliation says, I choose this relationship again. You are allowed to do the first without promising the second. Yes, so that was that. But just in a while, अब से कुछ ही देर में एक और चीज होने वाली है। हमारे संघर्ष साथी श्रीधर जो है वो हमें 7 बजे के उस पार ज्वाइन करने वाले हैं। वो हर बार हमारे लिए हमारे साथ जुड़कर जो है इस मिशन में साथ में काम कर रहे हैं। तो सुनेंगे उनसे भी कि इस बार वो क्या रियल लाइफ केस जो है वो लेकर आकर हमसे बात करने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहे ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
4: Dear Masti, Dil Se, because sometimes radio par baitha ek anjana insaan aapko duniya se zyada samajh leta hai.
5: बाहर वाले कुछ भी बोल जाए ना चलता है, पर जब घर वाले वैसा करते हैं ना तो थोड़ा अजीब हो जाता है और याद भी रह जाता है. डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है डियर मस्ती दिल से. मेरी एक नीज है, दूर की है पर सिंगापुर में ही रहती है, और उसने मुझे अपनी शादी का इन्विटेशन भेजा और साथ ही साथ ये भी बोला कि ड्यूरिंग माय होल वेडिंग, आप इतने अच्छे फोटोग्राफर हो तो आप पूरी वेडिंग मेरी कवर कर लेना. तो ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने अपना जो कोटेशन है ना वो उसे भेज दिया, पर्टिकुलर इतने इतने डॉलर का. पर सामने से आया कि आप मेरी वेडिंग, आपकी जो नीस हूँ मैं, मेरी वेडिंग का अमाउंट चार्ज करोगे. तो उन्होंने बोला हाँ तुम घर वाला अमाउंट दे देना, इतना हो जाएगा, बाकी तो क्या है, मैं तो रहूंगा देख लूंगा. तो सामने से जवाब आता है कि नहीं, आपको अगर करना है तो फ्री में कीजिए, वरना मैं आपसे रिश्ता नहीं रखूंगी, आप मेरी शादी में इनवाइटेड नहीं हो. तो ये सिचुएशन इनके लिए बहुत ऑकवर्ड हो गई. ओ माई गॉड. सो ये तो ट्विस्ट मैंने सोचा भी नहीं था. सो जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है उन्होंने ये भी बताया है कि वो फिर उस वेडिंग में कभी नहीं गए और आज भी इस चीज को सबक की तरह रखते हैं. क्या बात है, क्या बात है. बाय द वे, जो आपने इंसिडेंट्स मुझे भेजा है ना, इससे मुझे भी याद आया कि कुछ साल पहले मेरे किसी रिलेटिव ने मेरी यही मतलब बोलने वाली आर्ट को, वॉइस ओवर्स को ना इस तरीके से ही मांगा था और मैंने भी साफ मना कर दिया. मैंने कहा घर वाले रेट लेंगे, ऐसा होगा. वो दिन है, आज का दिन है, उनका कभी कॉल नहीं आया. सो डेफिनेटली इससे हमें एक टेक अवे भी मिल रहा है, और जिन्होंने मुझसे ये इंसिडेंट शेयर किया है थैंक यू सो मच. एक टेक अवे ये है कि आपको अपनी आर्ट और अपना पर्सनल रिलेशन जो है, फैमिली रिलेशन वाला जो एक रिश्ता होता है, वो कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, अदरवाइज चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, राइट. और एक बार अगर आप अपनी आर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे फिर कुछ काम नहीं होने वाला.
6: प्यारे हमको भी है, प्यारे तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए.
5: डेफिनेटली गानों का सिलसिला मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ डियर मस्ती दिल से शो पर.

0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksha and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
1: और इसी के साथ वक्त हो गया है कि आज के डियर मसी दिल से को रैप किया जाए. किया जाए.
2: No filters, no judgment, just your letters. Dear Masti, Dil Se.
1: और आज फिर कितने अलग अलग टॉपिक्स, कुछ सीरियस, कुछ अनकंफर्टेबल, कुछ एवरीडे लाइफ के टॉपिक्स. और आपके लेटर्स का आना कंटिन्यूज, विच टेल्स अस वन थिंग, कि आप हमें ट्रस्ट करते हैं. यू ट्रस्ट डियर मस्ती दिल से. जब हमने शो शुरू किया था, एक प्रॉमिस किया था, नो नेम्स, नो आइडेंटिटीज, कंप्लीटली अनोनिमस, और वो प्रॉमिस आज भी पक्का है. इनफैक्ट कुछ लिसनर्स ने और ज्यादा गाइडेंस के लिए हमको रीच आउट किया है, और हमारे पार्टनर जो हैं संघर्ष साथी, दे आर ऑलरेडी बिजी कनेक्टिंग विद देम. तो भाई क्लियरली कॉन्वर्सेशंस रेडियो से आगे भी जा रही हैं, एंड दैट्स वंडरफुल. तो अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है, बड़ा है, छोटा है, सीरियस है, या थोड़ा हटके है, क्रेजी है, तो हमें ज़रूर लिखिएगा. ऑफ कोर्स यू नो हाउ टू रीच अस. हमारे मस्ती मीडिया 24/7 ऐप के टॉप राइट कॉर्नर पर आप देखेंगे बहुत सारे तरीके हैं. ईमेल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, यहाँ तक कि टिकटॉक भी है. कहीं भी लिखना चाहेंगे जरूर लिखिए हमें. नाम हम कभी नहीं बताएंगे, बात जरूर करेंगे. माय नेम इज रेणुका. मिलते हैं अगले ट्यूसडे को डियर मस्ती दिल से. टिल देन हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग, अ फैंटास्टिक वीक अहेड, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हमारे बिना आपकी लाइफ अधूरी है. वी प्रॉमिस यू दैट. बाय फॉर नाउ.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: Hi, I'm Suraj Prajapati.
2: And hi, I'm Samar. Welcome, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। यहाँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के संस्कारी फिल्म मेकर का एकदम आधुनिक वेलकम है ये। हम आज बात करेंगे फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या की। थोड़े से शाई हैं, हाई फाई नहीं है, मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो खुद ही कोई परंपरा है।
1: आप शायद ये सोचते हैं कि परंपरा का निर्वाह करना, बदलते हुए नए जमाने के साथ कदम मिलाकर चलना, नए सोच के साथ चलना कोई मुश्किल की बात है, मगर मैं ऐसा नहीं सोचता। परंपरा की बहती हुई एक धारा है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। उसे अगर हम अपनी ना समझी से दूषित न करें और उसके कण कण में जो हमारी धरोहर समाई हुई है उसमें जो पवित्रता है उस पर श्रद्धा रखें, तो बदलते वक्त के साथ तालमेल रखने में दिक्कत कैसे, सवाल ही नहीं उठता।
2: हाँ जी, तो आज रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से मैं, जिस फिल्म मेकर की लाइफ को हम जानेंगे वो है सूरज बड़जात्या। फिल्म इंडस्ट्री पर जब पायरेसी का ग्रहण लगने लगा था, सैटेलाइट टीवी ने सिनेमा स्क्रीन की चमक को फीका करने की पूरी तैयारी कर ली थी। फिल्म के सब्जेक्ट एक्शन और रोमांस के बीच ही कहीं पेंडुलम की तरह वेगल कर रहा था, इधर से उधर घूम रहा था। टीवी पर रामायण और महाभारत जैसे माइथोलॉजिकल प्रोग्राम्स लोगों के मन की प्रोग्रामिंग कर रहे थे। तब ग्रहण से निकल कर एक सूरज उगा, उसने फिल्म इंडस्ट्री को नई सुबह दी, नई वैल्यूज दी, मोहब्बत का एक खास तोहफा दिया और सिल्वर स्क्रीन पर लेकर आया प्यार, परिवार और परंपरा का एक बेहद खास पैकेज, मैंने प्यार किया।

फिर ये सिलसिला चलता रहा, सूरज चमक उठा। आज उसी सूरज की गुनगुनी नर्म धूप को हम महसूस करेंगे। अब जल्दी से कप कॉफी बनाकर ले आइए, मैं भी एक कप कॉफी ले आता हूँ। दोनों मिल बैठ कर पियेंगे और बेहतरीन नगमों के साथ इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। सूरज बढ़ जाते की कहानी आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया के एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो, रेडियो मसी 24/7 लाइव से। मैं हूँ समर आपके साथ।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

आज भी दिल में कोई भाग्यश्री चिट्ठियों वाले कबूतर उड़ाती है, अंताक्षरी के बहाने रूठे प्रेम से माफी मांगती है, शाम की बेताबियां सजाती है, टेलीफोन पे गीत गाती है, छत पर परी की तरह सुनहरी छड़ी घुमाकर आधी रात को तमन्नाओं के दिए जलाती है, गुनगुनी धूप में पीली साड़ी पहने अपने ख्वाबों को तन पर लपेटे उड़ जाना चाहती है, उड़ते ही रहना चाहती है। जिसने हर लड़की के सपनों को एक प्रेम दिया, हर लड़के को प्रेम बना दिया, वो सूरज बढ़ जातिया है। हमारे साथ आज के लेजेंड फिर से मैं हूं समर। आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। सूरज बढ़ जातिया को पारिवारिक बिजनेस मिला राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के तौर पर। नो डाउट ही वॉज बॉर्न विद सिल्वर स्पून, पर जब उन्होंने फिल्म डायरेक्शन में कदम रखा उस समय राष्ट्रीय प्रोडक्शन कंपनी लॉस में चल रही थी, बहुत सारा कर्जा कंपनी पर हो गया था। उसे उबार कर ले आए सूरज। सही मायने में इस बार राजश्री के सूरज के उदय होने का दिन था। उनके दादाजी ताराचंद बड़जात्या ने उनको ये राह दिखाई। राजश्री के आसमान में पहले तारा आया जिसने सूरज को दिशा दी, आप ये कह सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ ताकि मैं भी कुछ अपने शब्दों का जादू तो दिखाऊं आपको, जबकि मैं जानता हूँ कि जादू तो मैं आपके दिलों पर भी कर लेता हूँ। ऐसा भाई लगने में क्या है, गलतफहमी में भी रहना चाहिए, खुश रहने के लिए ये गलतफहमी भी पाल रखी मैंने। वैसे मैंने प्यार किया की बात के बाद से जाने कितने दिलों में गुदगुदी हो ही गई होगी, मैंने जो अभी सुनाया आपको, है ना। अच्छा चलिए अब काम की बात करते हैं, वरना आप कहेंगे समर सिर्फ इश्क की बात करते हो यार, काम कब करोगे। तो ये कहानी काफी पहले से शुरू करते हैं, क्योंकि शायद ये जरूरी है इस बात को समझने के लिए कि जब कोई चीज विरासत में मिले तो कितना बड़ा बोझ होता है उस लेगेसी को संभाल कर रखना, उसे बरकरार रखना। सूरज ने ये काम बखूबी किया है, जानेंगे। पहले ये गाने हो जाएं, क्या कहते हैं आप? तो चलिए दिखता ना करते हैं, ये गाने सुन लेते हैं।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.

वेलकम बैक, मैं हूं एस समर और आज हम एस से सूरज की ही बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो। आज हम बात, जैसा कि मैंने कहा कि सूरज बढ़ जाते की कर रहे हैं, तो हम उनके दादा की विरासत की बात करते हैं पहले। जी, उनके दादा ताराचंद बड़जात्या, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रोडक्शन की नींव रखी। भाई देखिए, ऐसा भी होता है कि कई बार विरासत जो होती है, जो दादा ने रखी, वो पोते तक आते आते गुम हो जाती है। जैसे आरके स्टूडियोज बंद होने वाला, आपको बताऊंगा। तो आपको सूरज की कहानी सुनाने से पहले मैं तारे की कहानी सुनाना चाहता हूँ, राष्ट्रीय की कहानी सुनाना चाहता हूँ। वेल चलिए, आपको ले चलता हूँ इंडिया के राजस्थान के नागौर के एक छोटे से कस्बे कुचामन सिटी में, जहाँ के एक जैन बिजनेस फैमिली में जन्म हुआ ताराचंद बड़जात्या जी का, जो कि पढ़ने के लिए कोलकाता चले गए। उनके पापा चाहते थे कि वो लॉ की पढ़ाई करें, लेकिन उनका मन पढ़ाई में लगता नहीं था, फिल्म्स की तरफ उनका रुझान हो गया साहब। उनके पापा ने उनको ज्यादा फोर्स नहीं किया और मोती महल थिएटर्स में बतौर अप्रेंटिस लगा दिया। वो काम करने लग गए, कोई पैसा नहीं मिलता था उनको, पर वो काम करते रहे। ये बात रही होगी साल 1933 की, यानी 1933। अब क्योंकि बिजनेस फैमिली से थे, तो उन्होंने पता लगा लिया कि मोती महल थिएटर्स कंपनी की एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है, चामरिया टॉकी। ये साउथ में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। ताराचंद ने अपने काम से, मेहनत से सबको अपना मुरीद बना लिया था। उन्हें चामरिया टॉकी का काम संभाला दिया गया। यहाँ आकर उन्होंने एवीएम प्रोडक्शन, जेमिनी स्टूडियोज, विजय प्रोडक्शन और एसएस वासन के साथ न सिर्फ अच्छी रिलेशनशिप बनाई, बल्कि कंपनी को भी प्रॉफिट में ले आए। बिजनेसमैन डीएनए जो था उनके अंदर, पर कब तक किसी और के साथ काम करते भाई। तो वो भी फ्रीडम चाहते थे मोती महल थिएटर कंपनी से, और देश मांग रहा था आजादी अंग्रेजों से। और कमाल की बात देखिए, जिस रोज आजादी का झंडा देश में फहरा, उसी दिन ताराचंद जी ने खुद को मोती महल से आजाद बना लिया और राष्ट्रीय प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी। अब बस फिर गया था, यहाँ से फिल्म प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में वो उतर गए। लगातार सक्सेस देखी उन्होंने। इनके तीन बच्चे हुए, अजित कुमार, कमल कुमार और राजकुमार। और राजकुमार जी के बेटे हैं सूरज कुमार बड़जात्या, जिन्होंने फिल्म डायरेक्शन में इस विरासत को सहेजा, पाला, पोसा, आगे बढ़ाया। तो आज उन्हीं की कहानी कहानी यहाँ से शुरू होती है, और इन गानों के बाद सूरज बड़जात्या की पूरी तरह से कहानी पर फोकस करेंगे हम। आप सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ। आज हम सूरज की ही बात करने वाले हैं।

वेलकम बैक, नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। लेजेंड्स फिर से आप सुन रहे हैं और मैं समर आज आपको सुना रहा हूँ सन यानी सूरज की कहानी। और देखिए अब वक्त आ गया है सिंगापुर सनराइज का। अरे भाई, हमारे जो लेजेंड्स हैं आज के सूरज बढ़ जाते हैं, उनका वक्त आ गया है। तो जब सूरज जी ने जन्म लिया तो परिवार में फिल्में ही थी, आसपास यही अब परिवार का बिजनेस था। हर ओर पूरा माहौल फिल्मी था। दादाजी, चाचा, पिता सब फिल्म में थे। सो नेचुरली फिल्म सेट्स पर उनकी परवरिश हो रही थी। वो काम को देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे। घर में भी सब लोग एक साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली थी, तो आप सोच सकते हैं कि सब लोग एक साथ खाते पीते थे, फिल्म्स ही जीते थे, फिल्म्स को ही पहनते ओढ़ते थे, तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उनका ध्यान पढ़ाई में लगता लगा भी नहीं। He was very bad in his academics. खराब नंबर लाते थे, ना केमिस्ट्री जचती ना फिजिक्स। दरअसल उनके ऊपर तो किसी आर्ट का साया था ना। तो क्या सूरज जी ने स्कूल छोड़ दिया? नहीं नहीं, जब वो 11th स्टैंडर्ड में आए तो उनके टीचर ने उनके पापा को बुलाया और बहुत भला बुरा सुनाया साहब। कहा कि जिस फैमिली में सिनेमा की बात होती है वहाँ बच्चा पढ़ाई क्या करेगा भाई। ये बात सूरज जी को बहुत ही खराब लगी और तब से उन्होंने पढ़ाई में मेहनत की, दोनों साल टॉप किया, आगे भी कॉलेज में अच्छा काम किया। ऐसी लगन उनके भीतर थी भाई साहब, धुन के पक्के। लेकिन असली लगन तो सिनेमा में लगाई उन्होंने। उन्होंने अपने पापा से कह दिया कि उनको तो फिल्में ही बनानी है। उनके पिताजी ने उनको महेश भट्ट जी के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम पर लगा दिया। यहाँ रहकर सूरज जी ने सीखा काम की बारीकियाँ और फिर जब महेश भट्ट को असिस्ट करना हो, वो हाँ आपके गुरु, तो फिर बात ही क्या है, कहने ही क्या। महेश भट्ट उन दिनों फिल्म बना रहे थे सारांश, जिसमें उन्होंने अनुपम खेर को ब्रेक दिया था। अनुपम जी की ये पहली फिल्म थी। सूरज जी इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जुड़ गए क्योंकि राष्ट्रीय प्रोडक्शन की ही ये फिल्म थी। सूरज जी के साथ अनुपम की पहली मुलाकात का जिक्र भी करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, अभी एक ले लेते हैं ब्रेक। गाने बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए लाइनअप। मैं चाहता हूँ कि मेरी बातों के साथ साथ इन गानों का भी लुत्फ उठाएं आप और सुनते रहें सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009, रेडियो मस्ती।

0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksh and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत, मैं हूँ समर और शो चल रहा है लेजेंड्स फिर से। आज जहाँ हमारे साथ राष्ट्रीय फिल्म्स के सूरज बढ़ जाते हैं, ब्रेक से पहले आपको अनुपम खेर और सूरज जी का एक वाकया सुनाने वाला था, तो अब सुना देता हूँ। हुआ यूँ कि अनुपम जी के शूट का पहला दिन था, सारांश फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो सेट पर पहुंचे मगर होता ना एक्साइटमेंट में कह लीजिए या एंग्जाइटी की वजह से वो अपनी डायलॉग वाली फाइल भूल गए। अब अगर वो जाते वापस तो शूट अफेक्ट होता। वहां उस सेट पर उनको एक दुबला पतला लड़का खड़ा दिखाई दिया। उन्होंने उसको बुलाया और कहा, मेरी डायलॉग की फाइल ले आओ। वो बेचारा भागते भागते गया और महबूब स्टूडियो से अनुपम जी की फाइल ले आया। और ये शूटिंग कहां हो रही थी? राष्ट्रीय स्टूडियोज में। अनुपम जी को बड़ा ही स्वीट लगा ये लड़का ही थे सूरज बढ़ जात्या। अनुपम खेर को तब क्या मालूम था कि असिस्टेंट डायरेक्टर बना ये लड़का एक रोज उनको अपनी फिल्म में लेगा और डायरेक्ट भी करेगा। खैर, सूरज जी ऐसे ही हैं, डाउन टू अर्थ। चाहते तो मना कर देते भाई, वो तो इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी के मालिक के बेटे थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। अच्छा, अनुपम खेर कहते हैं कि सूरज जी एक बड़े ही बेहतरीन एक्टर भी हैं। हालांकि वो कभी आए नहीं इस फिल्म में, लेकिन डायरेक्ट करते हुए वो पूरे सीन को एक्ट करके दिखाते हैं और क्या कमाल की स्टोरी सुनाते हैं, बहुत ही कमाल। आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी टेलर। आइए अनुपम खेर जी से सुन लेते हैं कि वो सूरज जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं।
1: आई थिंक जो सूरज का जो अप्रोच है काम करने का, पहली बात तो सबसे ज्यादा जो खूबसूरत बात है और अच्छी बात है वो ये है कि ही इज सो वेल प्रिपेयर्ड। ही इज नॉट मेकिंग फिल्म्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर एंड ही नोज हिज सब्जेक्ट। उनको अपना गाने की सिचुएशन, शॉर्ट विजन, कहाँ ट्रॉली लगनी है, कहाँ क्लोजअप चाहिए, और बहुत लोगों को शायद हैरानी होगी बट वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर भी है। और वो चाहे बिल्कुल एक्टिंग करके नहीं बताता, मगर वो बता देता है कि उसको क्या चाहिए। एंड आई हैव नेवर सीन हिम एंग्री, एजिटेटेड, जो कि एक बड़े डायरेक्टर के लिए ऐसा हो जाना बहुत आसान सी बात है। और इट्स अ नाइस फीलिंग।
0: अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि वो एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। आपको उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन का वो सीन तो याद ही होगा, क्रिकेट वाला, जब बिंदु गिर जाती है। अगर याद नहीं आ रहा है तो जरा जोर डालिए दिमाग पर। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार मैं मिलता हूँ। ये ब्रेक बड़े ही मधुर संगीत का है, आप आनंद लीजिए। अरे बाप रे, मुझे क्या हो गया, शायद ये अब सूरज जी का असर हो गया है। कृपा आ रही है, आने दीजिए कृपा को, आने दीजिए। और आप सुन लीजिए ये गाने रेडियो 24/7 लाइव पर समर के साथ।

0: क्या हुआ, यहाँ क्यों आ गए?
1: संजना से सच्चाई छुपाकर हमने ठीक नहीं किया सुशीला।
0: क्या मतलब?
1: देख नहीं सकती तू कि संजना प्रेम किशन को किस हद तक चाहने लगी?

0: लीजिए वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समर के साथ लेजेंड्स फिर से। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फिल्म हम आपके हैं कौन के उस सीन की जब बिंदु जी गिर जाती हैं। ये क्रिकेट का सीन होता है, बॉल के लग जाने पर बिंदु जी गिर जाती हैं, फिर क्या होता है? अच्छा सुनिए, पहले वो सीन सुन लीजिए आप।
1: फागुन जी ऐसा मत कहो,
2: कमरे तोड़ दी। सॉरी बुआ जी।
3: सॉरी की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है?
1: मामी जी ये यहाँ क्रिकेट सीखने आई थी।
3: क्रिकेट क्रिकेट, ये क्या खेल हुआ? रोज रोज की आफत हो गई।
0: अब इस सीन को पूरा इनेक्ट करके सूरज जी ने बिंदु को बताया। कैसे बताया ये मैं आपको सुनवाता हूँ कि उन्होंने बिंदु जी को कैसे ब्रीफ किया ये सीन सूरज जी की आवाज में सुनिएगा।
4: अरे राम कमरी तोड़ दी। आई एम सॉरी बुआ जी। सॉरी की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? ये क्रिकेट सीखने आई थी मामी।
3: मैं वो करूंगी तो ये भूल गए।
4: क्रिकेट ये खेल क्या हो गया? रोज रोज की आफत होगी।
0: हाँ जी सुना आपने, ये होता है एक कलाकार। उसे लगता है सीन परफेक्ट होना चाहिए था। उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, आप भी जानते हैं। एक एक चीज में परफेक्शन, एक्टिंग हो चाहे कलाकारों का सिलेक्शन हो, सेट्स हो, फैमिली वैल्यूज हो, प्यार का फील हो। अच्छा जब वो अपनी इस फिल्म की कहानी सुनाते थे कलाकारों को तो ले जाते थे एक मोटी सी फाइल, पर सुनाते थे उसे बिना देखे ही, एक एक सीन सुना डालते थे। उनकी बारीकियां देखिए, पर्दों का कलर, कुशंस कैसे होंगे, आर्टिस्ट की ड्रेस का कलर कैसा होगा, सब कुछ बताते थे वो, सब कुछ सुनाते थे। यानी जब भी वो एक स्टोरी लिखते उसको 2-3 साल तक वो सिर्फ परफेक्ट करते रहते थे, रटते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे आधुनिक कालिदास हैं वो, जो घोंट घोंट कर स्क्रिप्ट पी जाते हैं और स्क्रीन प्ले अपने आर्टिस्ट को सुनाते हैं। सच कहें तो वही हैं जिन्होंने सलमान को प्रेम बनाया। कैसे सलमान से मिले? क्या सलमान ही उनकी फर्स्ट चॉइस है? आप भी जाना चाहते ना? चलिए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक ब्रेक बनता है यहाँ पर, उन्हीं की कुछ फिल्मों के गाने सुन लेते हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद और सलमान खान से उनकी मुलाकात कैसे हुई इसका किस्सा सुनाते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksha and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं.
2: Life थोड़ी boring लग रही है. Tension नहीं लेने का. Time for your therapy session. मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त. बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
3: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से.

हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। समर आ गया है आपके लिए लेकर लेजेंड्स फिर से, और आज मैं सूरज बड़जात्या की कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। लेट 80s का दौर था, कई स्पेशलिस्ट कई विशेषज्ञ इसे हिंदी सिनेमा का डार्क एज भी कहते हैं। इस दौर का बॉलीवुड सिनेमा स्टार सन्स एक्टर्स से भरा हुआ था। ऐसे में एक स्क्रिप्ट राइटर के बेटे को कौन पूछता, यानी सलीम खान का बेटा सलमान खान। जी हाँ, सलमान खान इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे एक अदना रोल पाने के लिए। 3-4 साल बीत चुके थे उन्हें, उनके खाते में इक्का दुक्का कैरेक्टर रोल के सिवा कुछ भी नहीं था दिखाने को। उनके पापा ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई तुम कभी हीरो नहीं बन सकते। तभी ताराचंद बड़जात्या ने घोषणा कर दी, सूरज एक फिल्म बनाने जा रहा है, वो भी राजश्री के बैनर से। सलमान के लिए तब वो बहुत बड़ा बैनर था। वो बड़े ही हेजिटेट होकर सूरज से मिलने गए और कहा, मुझे आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी। लेकिन सूरज ने कहा, नहीं मैंने तुम्हें साइन नहीं किया है, मैं दीपक तिजोरी और कुणाल गोस्वामी को शॉर्टलिस्ट कर चुका हूँ। सलमान को लगा कि ये चांस भी गया। लेकिन फिर एक दिन राजश्री स्टूडियो से फोन आया और सलमान को ऑडिशन के लिए बुलाया गया। उनके नाम की सिफारिश कई मिलने वालों ने सूरज से की थी। ऑडिशन में उन्हें कुछ डांस स्टेप्स दिखाने को कहा। सलमान उस दिन अपने साथ अपनी दोस्त फराह खान को भी लेकर आए थे और बाद में फराह ने उन्हें बताया कि वो बहुत खराब नाचे। खैर जो भी है, सूरज को वो जच गए। उनको नया और रॉ चेहरा चाहिए था, जैसे उनकी फिल्म की हीरोइन थी भाग्यश्री। तो इस तरह से सूरज के प्रेम बने सलमान। ये वो फिल्म थी जिसने रातों रात सूरज और सलमान दोनों को स्टार बना दिया। यहीं से दोनों की अतरंगी यारी शुरू हुई और जो शुरू हुई साहब, जो चली है यारी वो आज तक है जारी। प्रेम रतन धन पायो तक तो आपने देखी ली, और अब सूरज अपनी अगली फिल्म सलमान के साथ ही करने वाले हैं, इसकी भी वो घोषणा कर चुके हैं। क्या बात है, प्रेम हो तो ऐसा।

राष्ट्रीय प्रोडक्शंस, वीर सावरकर स्ट्रीट, मुंबई 44, फिल्म्स के बाद शायद बंद हो जाएगा। अरे बाबा, न्यूज नहीं सुना रहा हूँ, नहीं डरा रहा हूँ, पर एक वक्त को ये बात सबके सामने थी। ऐसा हो सकता था क्योंकि कर्जा बहुत बढ़ गया था, मंदी थी, जिसकी बात मैंने पहले आपको बताई थी, क्योंकि तब आई मैंने प्यार किया। ट्रेड गाइड लिस्ट में इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अब तक की सबसे बड़ी 8 फिल्म्स में ये फिल्म शामिल हो गई। तारा चंद जी ने कहा कि ये फिल्म हमारा वाइल्डेस्ट ड्रीम साबित हुई। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप यकीन करेंगे कि छोटे छोटे गांवों और शहरों में सिनेमा हॉल में लोग कबूतर छोड़ देते थे, क्योंकि फिल्म में गाना है ना, कबूतर जा जा जा, चिट्ठी लेकर जाता हुआ कबूतर इतना पॉपुलर हो गया था इंडिया में। गोरखपुर में कुछ लड़के सिनेमा हॉल में आए और उनके पास एक बड़ी सी ट्रे थी जो एक सफेद चादर से ढकी थी। सिक्योरिटी ने उनका पीछा किया, चादर हटाई तो देखा उसमें एक बड़ा सा केक था। वो लोग हीरोइन का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। बताइए, कमाल हो गया ना ये तो। ब्लैक कार्ड्स आ गए मार्केट में, जिनमें फ्रेंड्स लिखी ब्लैक कैप जो सलमान ने पहनी थी, सलमान की लेदर जैकेट, ये सब बड़ा ही मशहूर हो गया। और ये जैकेट वैसी थी जैसे हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज ने टॉप गन में पहनी थी, और इसे ट्रेंड बना दिया सलमान खान ने इंडिया में। अच्छा, भाग्यश्री इस फिल्म के बाद ज्यादा फिल्मों में दिखाई नहीं दी, क्योंकि उनकी इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान शादी हो गई थी, तो वो हमेशा मोहब्बत में डूबी नजर आती। उनके चेहरे पर एक अनूठी चमक थी, आंखों में प्यार था, शायद इसी ने सबको दीवाना बना दिया था उनका। वैसे ऑल इन ऑल, इन सबके पीछे बड़ी मेहनत थी सूरज बड़जात्या की, जिन्होंने हर एक बारीकी पर काम किया और परिवार को मुसीबत से बाहर निकाला, अपने प्रोडक्शन हाउस को बचा लिया। तो आज सूरज बड़जात्या की पूरी कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी। रेडियो मस्ती पर सुनते रहिए। फिलहाल ये गाने एंजॉय कर लेते हैं।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: एक बार फिर से आपका इस्तकबाल, आप सुन रहे हैं मेरे यानी समर के साथ लेजेंड्स। फिर से क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ भाई, किस तरह से मैंने प्यार किया ने एक फैशन ट्रेंड ही नहीं मोहब्बत का ट्रेंड भी शुरू कर दिया, और उसकी अगली फिल्म ने तो सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए भाई साहब। वो थी उहू अली।
1: हेलो, कौन कहिए?
2: ये आपकी भाभी पूछ रही हैं कि आप घर कब तक आ रहे हैं।
1: हमें आते आते टाइम लग जाएगा। भाभी से कहिए कि वो आराम करें, लल्लू से कहिए कि हमारा खाना बना के रख दे, और आपके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग।
0: समझ गए होंगे आप मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। वो फिल्म थी हम आपके हैं कौन। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। साल 1989 को यूएन ने द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली घोषित किया था, तब आई फिल्म मैंने प्यार किया। ये भी एक कोइंसिडेंट ही रहा कि साल 1993 में यूएन ने डिसाइड किया कि अगले साल से यानी ईयर 1994 से 15th मई को हर साल वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जाएगा, और 94 में रिलीज हुई फिल्म हम आपके हैं कौन, और ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग ही दिशा में ले गई। संस्कार, पारिवारिक मूल्य और प्रेम का तड़का, कमाल था सब। सभी को लगा परिवार ऐसे होने चाहिए। ये वही दौर थे जब परिवार टूट रहे थे, न्यूक्लियर फैमिलीज अस्तित्व में आ रही थी।
3: हर फैमिली में प्रॉब्लम है, पर वो खुश नसीब है जिनकी फैमिली होती है।
0: हम आपके हैं कौन रिलीज हुई, इनिशियल लेवल पर महज 30-32 सिनेमाघरों में ऑल ओवर इंडिया, लेकिन फिर इसके प्रिंट बढ़ाने पड़े, और एक वक्त ऐसा आ गया था जब इस फिल्म को लोग सिनेमाघरों से उतारने ही नहीं देते थे, पुलिस को बुलाना पड़ता था। बाप रे बाप, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली ये फिल्म बन गई। सबसे पहला रिकॉर्ड इसी फिल्म के नाम है 100 करोड़ के बिजनेस का इंडिया में। एनीवे, राइज एंड फॉल तो होता ही रहता है। सूरज जी की अगली फिल्म हम साथ साथ है ने भी कमाल किया, पर मैं प्रेम की दीवानी हूँ बुरी तरह पिट गई। शायद इसमें उनके प्रेम नहीं थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके बाद विवाह आई जिसने फिर सब कुछ बदल दिया, और फिर आई प्रेम रतन धन पायो लंबे अंतराल के बाद। इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप सुन रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: वेलकम बैक सूरज की कहानी यानी सूरज बड़ जाते की कहानी के साथ समर एक बार फिर से हाजिर है रेडियो मस्ती पर। और चलिए अब बगैर वक्त जाया किए सीधे कहानी पर आते हैं। तो सूरज जी बिजी हो गए थे टीवी शोज में, उन्होंने पियाल बेला जैसा शो बनाया और काफी पैसे और वाहवाही कमाई, लेकिन फिर एक स्टोरी पर काम कर रहे थे, वो सलमान ही उनके दिमाग में थे और नजर में हीरोइन थी सोनम कपूर। जब उन्होंने सोनम की फिल्म रांझना देखी तो उन्हें लगा कि इसे ही लेते हैं फिल्म में। वो सलमान के पास पहुंचे, सलमान ने कहा क्या मैं अब प्रेम के रोल में ठीक लगूंगा? सूरज ने कहा हाँ सही है। अब उन्होंने सोनम की तस्वीर दिखाई, यह है हीरोइन। सलमान बोले ठीक है बताता हूँ। 1.5 महीना हो गया साहब। सलमान की ओर से कोई जवाब नहीं आया। सूरज जी ने फोन किया, सलमान बोले अभी सोच रहा हूँ। 4 महीने बाद सूरज उनके पास पहुंचे, पूछा क्या हुआ? सलमान बोले यार मैंने इस बच्ची को अपने सामने बड़ा होते देखा है, रोमांस कैसे करूंगा इससे? सूरज जी बोले अब आपकी उम्र की को लोग देखना पसंद नहीं करेंगे ना स्क्रीन पर। सलमान ने कहा ठीक है तो फिर करते हैं, लेकिन आज से मैं अनिल कपूर को अनिल सर बोलूंगा, फील आएगा फील। पर सूरज जी भी कमाल है, जो सोच लेते हैं उसे ही कैरेक्टर लेते हैं और एक फिल्म पर बहुत सुकून से काम करते हैं। वो फिल्म के प्रचार पर ज्यादा पैसा खर्च करना ठीक नहीं समझते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बेटर है कि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर ज्यादा काम किया जाना चाहिए ताकि फाइनल प्रोडक्ट अच्छा आए। लोग फिल्म देखने आते हैं, अच्छी होगी तो खुद माउथ पब्लिसिटी करेंगे, अपने आप चल जाएगी फिल्म। तो चलिए आज तो दीजिए इजाजत, आज जाने का वक्त हो गया है और हम चाहेंगे कि सूरज बड़जात्या यूं ही फिल्म्स बनाते रहें। मैं अपनी मम्मी को बोलता रहूं चलो आज सिनेमा देख कर आए।
1: एवरी टाइम यू मेक अ फिल्म द फर्स्ट डे ऑलवेज गिव्स यू बटरफ्लाइज इन द स्टमक, सो आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन वंस अगेन।
0: तो फाइनली इजाजत दे दीजिए अब, बाय बाय, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कुछ वादे भी करते जाइए, कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें और मुझे भी याद कीजिएगा अपनी दुआओं में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

0: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
4: जोश में रहो।
5: माइक चेक, बोले

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: आड़ी भी आ रही है।

ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था।

0: system that it's love for money.
1: जादू है नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
3: रात।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

0: ताली ताक धुमी ताक ताली ताक जमी ताक झाला आंघो ताक झोगी ताक ताजी गेन ताक नाक ताक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झम तारी ता झग तारी ता झन झाले कोको तारी दाखो तारी गेटे ताक झम तारी ता झग तारी ता झन झाले कोको तारी दाखो तारी गेटे झम तारी झग तारी ताक नाक ताक ताज झन ताज झुम ताज झन ताज झम तारी झग तारी झन झन कोको ताज झन ताज झुम ताज झन ताक ताक धंग कर रुदम कर जग रुदम ताक धंग कर रुदम
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

Allah! Allah!

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

दिन की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: सोचो यार, अगर सिंगापुर में MRT नहीं होती, टैक्सी नहीं होती, बसेस नहीं होती, खुद के व्हीकल्स नहीं होते, तो सुबह कितनी सुहानी होती ना। मतलब पैदल पैदल टहलते टहलते टहलते टहलते आराम से ऑफिस पहुंचो, आराम से काम करो, फिर टहलते टहलते टहलते टहलते आराम से शाम को घर पहुंचो। मतलब आपका पूरा वक्त मैक्सिमम कम्यूट करने में ही निकल जाता है ना। मतलब कितना सन्नाटा होता, पॉल्यूशन का तो बिल्कुल नामो निशान ही नहीं होता। और हॉन्किंग गलती से भी सिंगापुर में अगर हो जाती है ना, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तब कुछ और होता ना, कि बातें करते करते, रस्ते में ही मीटिंग करते करते कहीं पहुंच जा रहे हैं। मतलब कितना मजा आता ना, कुछ अलग होता है यार। मतलब आपको जिनसे मिलने जाना है उनको एक पॉइंट पे बुलाया और बस टहलते गए या गार्डन में बैठ गए। हाँ सो मैं आरजे रूपर मस्ती मॉर्निंग शो पर वंस अगेन आपसे मुलाकात करने आ चुकी है। और आज मैं MRT से ऑफिस तक ना पैदल चलकर आई। ऐसे ही वर्कआउट थोड़ा सा मिसिंग था मेरा। सो मैंने सोचा अगर ये सब कुछ नहीं होता तो कितना अच्छा होता। फिर मैंने कहा ठीक है नुपुर, ख्याली दुनिया से बाहर निकलो, ऑफिस पहुंचने में लेट हो रहा है, टाइम से नहीं पहुंची तो तनख्वाह पे आ जाता है। चलो ठीक है, फिलहाल मैं आज नुपुर बहुत सारी बातें आपके लिए लेकर आई है, डेफिनेटली आपको मिस नहीं करना है। डोंट गो एनीवेयर।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: जयपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर।
3: देखो लाइफ में सबको सेकंड चांस मिलता है, लेकिन सेकंड चांस कोई कितनी बेहतर तरीके से एंजॉय करता है ये बड़ी बात है, और ऐसा वाला सेकंड चांस तो हर कोई एंजॉय करना चाहता है। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज अनुपर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ, और मुझे लगता है कि एक्टर्स की लाइफ में जो सेकंड चांस मॉम या डैड बनने का आता है ना, तो ये लोग इसे मौके को छोड़ना नहीं चाहते, राइट? और अभी चल रहा है बेबी फेज किसके लिए, दीपिका पादुकोण के लिए। हाँ जी, सेकंड बेबी इन्होंने इंस्टेंट फर्स्ट बेबी के बाद ही प्लान कर लिया, और अभी क्विकली इन्होंने छोटे छोटे से बट इम्पॉर्टेंट से मूवीज के जो रोल है, शूटिंग है, वो कंप्लीट करके अपने होम टाउन में इंजॉय करने का वक्त निकाल लिया है। हाँ जी, और इसी बीच मैं आपको बताना चाहूंगी, दीपिका पादुकोण अपकमिंग शाहरुख खान स्टारर किंग मूवी में नजर आएंगी, और अल्लू अर्जुन स्टारर राका मूवी में भी नजर आएंगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये अटकले लगा रहे थे कि यार इनका एक छोटा सा रोल ब्रह्मास्त्र मूवी के पार्ट 1 में था, इनडायरेक्टली ये रणबीर कपूर की मॉम दिखाई गई थी, है ना? सो बहुत ही छोटा रोल था, लेकिन आगे कहा जा रहा था इसे कंटिन्यू किया जाएगा ब्रह्मास्त्र मूवी के सेकंड पार्ट में, बट फॉर अ वाइल इन अटकलों को मना कर दिया गया है, कह दिया गया है ऐसा कुछ भी नहीं है, दीपिका पादुकोण जो है वो ब्रह्मास्त्र मूवी की फ्रेंचाइजी से हट चुकी है। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि दीपिका पादुकोण अपने अपकमिंग सेकेंड टाइम मॉम फेज को एंजॉय करने वाली हैं, और इसीलिए ये सिर्फ इंपॉर्टेंट रोल्स को ही फोकस कर रही हैं। आज नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट व्हाइल।
4: वी आर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड बॉलीवुड स्टाइल एनीवेयर एनीटाइम।

0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: क्रिशिवल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: GG Mart, your personal grocer।

0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksh and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
1: Imagine, आपने ना roasted cashews and assorted वो होते हैं ना अपने मखाने, right? Dried cranberry और इसी में थोड़े से top ups करके बढ़िया वाला ना salad बना लिया, तो मतलब सोचिए आपकी health किस level पे पहुंच जाएगी. ये health घर बैठे बैठे भी आपको मिल सकती है. कैसे भाई? Singapore में है ना कौन, ddmartonline.com. हां जी, मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ. And definitely n number of dry fruits की जो range है वो आप pick कर सकते हैं. Throat relief के लिए आप special जो tea है organic वो भी pick कर सकते हैं. Lemon tea, hibiscus tea, हर तरह के seeds वो चाहे chia seeds हो या flax seeds हो, उसमें भी आपको organic चीजें मिल जाएंगी. And अगर आप मेरी तरह super healthy बंदे हैं या बंदी हैं, तो आपको रागी biscuits जैसा concept भी बहुत ज़्यादा मतलब fascinating लगेगा. ये सारी चीजें बस एक टैप अवे है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन जाना है ddmartonline.com, जो कि है आपके पर्सनल ग्रोसर. हां जी, मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ. डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूं मैं इन अ शॉर्ट वाइल.

0: सुन टका टक, ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: देखो वो वक्त गया जब कहा जाता था रब ने बना दी जोड़ी, किस्मत ने बना दी जोड़ी। अब तो वक्त आ चुका है AI ने बना दी जोड़ी। हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं RJ नुपुर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि AI ने बना दी जोड़ी, इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए बनाए जोड़े जो है ना, उनको तो वो बदल दे रहा है। मतलब इस तरह बदल दे रहा है कि वो सब सच लग रहा है और नए नए लोगों को मिलाकर इस तरह से जोड़ियां बना दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यार यही सच है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो जब तक आपने खुद AI टूल का इस्तेमाल नहीं किया है, तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि ये सच है या AI है। इसीलिए इन टूल्स को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आज अनुपम मसी मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, रिसेंटली AI ने अनइमेजिनेबल जोड़ी बना दी। पता है किसकी? गोविंदा के बेटे की और अपने जो जॉनी लीवर है ना, उनकी बेटी की। हाँ जी, गोविंदा के बेटे यशवर्धन की और जॉनी की जो बेटी है जैमी लीवर, इन दोनों की शादी की फोटो वीडियो वायरल चल रही थी। हाँ, लेकिन बाद में जैमी ने खुद सोशल मीडिया पे आकर बताया कि यार ये सब AI है और ये देख देख के मुझे तो हंसी आ रही है कि ये सब चल क्या रहा है। हाँ, तो ऐसी बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो AI का इस्तेमाल करना भी है और थोड़ा डर कर रहना भी है, बिकॉज यू नेवर नो कब कहां क्या निकल कर आ जाए। RJ नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: बस तैयारी करने के दिन आ चुके हैं। देखो अपने घर में मेहमान आने वाले हैं और वो भी बहुत स्पेशल, साल में एक बार आते हैं, कुछ ही दिन रहते हैं और हमारा दिल जीत जाते हैं। आहा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइफ पर मैं आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है एंड डेफिनेटली हम हमेशा से यहाँ पर रेडियो मस्ती पर बहुत धूमधाम से गणपति जी का स्वागत करते हैं। और इस बार अगर आप भी अपने घर पर स्वागत करने वाले हैं और करते आ रहे हैं तो मेरे कहने पर आपको जाना पड़ेगा कहाँ, ज्योति स्टोव्स एंड फ्लावर शॉप, जहाँ पे 6 इंचेस टू 42 इंचेस तक रेडी आपको गणेश जी के आइडल्स मिल रहे हैं। हर तरह के कलर कॉम्बिनेशंस, फेस एक्सप्रेशंस, पोशाक, हर तरह की पूजा की सामग्री आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। सो डेफिनेटली आप विजिट कीजिए वन कैंप स्टोर जो कि सब लोग जानते हैं और वहां से बस 5 मिनट की दूरी पर इसका अगला स्टोर भी है, दैट इज 21 कफ रोड पे। तो आप एक्सप्लोर कीजिए और गणेश जी के जो आइडल्स हैं वो एडवांस में बुक कर लीजिए। और एक सरप्राइज और है, अगर आप गणेश जी की बुकिंग कर लेंगे, आप आइडल खरीद लेंगे तो जो आपकी रिसिट है वो हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर दीजिए 9151 8963 पर, बिकॉज आपको मिल सकता है के बदले में एक पर्ल नेकलेस हमारी तरफ से सरप्राइज। बोलो गणपति पप्पा मोरिया आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।